मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल के 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 6 जून 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076

भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है भक्ति रचनाओं का ये कार्यक्रम लेकर। श्रोताओं, आज शनिवार है, शनिदेव भगवान को आप और हम सभी आज याद करते हैं। कर्मों के फलदाता और न्याय के देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। शनि देवराज का सबसे बड़ा संदेश यही है, जैसा कर्म वैसा फल। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। आइए आप और हम सभी शनि चालीसा का पाठ करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं।

श्रोताओं, आइए अगली भक्ति रचना है इन्हीं विचारों के साथ। भगवान शिव, देवों के देव, जिन्हें हम सभी महादेव के नाम से बुलाते हैं, जो संहार करता होने के साथ साथ इस सृष्टि के आदि और अंत भी हैं। वे भोलेनाथ हैं क्योंकि उनकी भक्ति में दिखावे की नहीं केवल सच्चे मन और समर्पण की जरूरत हो।

होती है। शिवजी का जीवन हमें सिखाता है कि वास्तविक शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि सादगी में है। वेदों पुराणों में सर्वोच्च शक्ति होने के बावजूद उनका रूप कैलाश पर ध्यानमग्न और भस्म रमाए हुए है। ये विचार हमें अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। आइए भोलेनाथ को याद करते हुए उनका भजन हम गुनगुनाते हैं।

श्री हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और पूर्ण समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी भक्ति अहंकार को मिटाकर निस्वार्थ सेवा, धैर्य और असीम साहस का मार्ग दिखाती है। वे न केवल भक्तों के संकट हरते हैं, बल्कि जीवन में सही दिशा और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं। आइए बालाजी को याद करते हुए उनका भजन हम सभी मिलकर गाते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। अगली भक्ति रचना इन विचारों के साथ, भगवान झूलेलाल जी, जिनको वरुण देव का अवतार माना जाता है, उनका जीवन और दर्शन हमें प्रेम, एकता, सत्य और साहस का पाठ पढ़ाता है। वे अधर्म का नाश करने और सभी धर्मों के बीच सद्भाव बनाए रखने के प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें जल के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। जल की तरह उनका संदेश भी निर्मल, शीतल और जीवनदायिनी है। जिस प्रकार जल सबके लिए समान है, उसी प्रकार उनका आशीर्वाद बिना किसी भेदभाव के सभी पर बरसता है।

श्रोताओं, अगली भक्ति रचना है इन विचारों के साथ। लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिनको हम सभी रामसा पीर के नाम से बुलाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक समरसता, समानता के प्रतीक माने जाते हैं, और श्रद्धालु अपने मन्नत मांगने के लिए बाबा के द्वार पर पैदल चलकर जाते हैं रुणेचा धाम, तो बाबा उनकी परीक्षा लेता है। इस गर्मी में, इस तपती धूप में, जब भक्त उनके द्वार पर चलकर पैदल जाते हैं, तो बाबा से क्या कहते हैं इस भजन के माध्यम से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से, अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। लीजिए सुनिए चिंतन। आज का विषय है योग निद्रा। वाचक स्वर हैं चैतन्य गुरु जी के।
1: योग निद्रा, ये योग निद्रा, इसका शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको जानने से पहले हम निद्रा क्या होती है, यानी रात को हम सो जाते हैं तो होता क्या है, सो जाने का मतलब जाते कहाँ। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और वो हमारा कंठ के पास में हिता नाम का एक नाड़ी होता है जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ रहता है। तो दिन भर हम काम करते हैं, थक जाते हैं, हमारा बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है, तब हम सो जाते हैं रात को। लगभग आम व्यक्ति के लिए 6 से लेकर 8 घंटे का नींद जरूरत पड़ता है। इन 6 से 8 घंटे में होता क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में मिल जाता है, तब वो जो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। जब वो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति अपना जीवन में जो कुछ भी उन्होंने देखा, सोचा और वो सभी बातें वो किया नहीं है, कर्म में नहीं लाया, और वो नींद में ड्रीम्स जो हमारे ख्वाबों के माध्यम से बाहर निकलता है, और उस स्थिति के बाद में जब वो अनकॉन्शियस माइंड भी लेवल जाते हैं तो गहरा नींद में चले जाते हैं। अब योग निद्रा का मतलब है इस कॉन्शियस माइंड को जागते हुए कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड में मिल जाना, मतलब हमारा सोच के अंदर में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दीवार होता है, उस दीवार को तोड़ देने का नाम योग निद्रा है। मतलब हमारा कान सुनते रहेंगे और शरीर स्पर्श होते रहेगा लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट करते किससे, जब हम कॉन्शियसनेस से पहचानते हैं तो अब कॉन्शियसनेस को हम काम देते हैं। तो इसमें 3 प्रक्रिया होता है। नंबर 1, हमारा कॉन्शियस माइंड को हम अपना अंगों में ले जाते हैं, लेट करके आंख बंद करके अपना पूरा मन को, चित्त को, जो सिर के सिरे पर जहाँ ब्रह्मरंध्र कहलाता है,

वहां पर केंद्रित करते हैं। वहां से केंद्रित करता हुआ उसको हम मेरुदंड के ऊपर जहां से शुरू हो रहा है वहां पर रिंग के नीचे रिंग बीच में जगह पर इस तरह हमारा कॉन्शियस माइंड को चलाते रहते हैं। ऐसा पूरा मेरुदंड के ऊपर रिंग के नीचे रिंग बीच में जगह जहां पर मज्जा बोन मैरो कहते हैं तो उसको देखता हुआ नीचे तक आते हैं। अब ऊपर से जो रंध्र निकला हुआ है वो मेरुदंड के आखिरी कोना पर वो जो रंध्र निकलता है अब उसके अंदर में से हम छीनता हुआ उसके अंदर में रोशनी देखता हुआ

0: अब ऊपर से जो रंध्र निकला हुआ है वो मेरुदंड के आखिरी कोना पर वो जो रंध्र निकलता है, अब उसके अंदर में से हम छीनता हुआ, उसके अंदर में रोशनी देखता हुआ ऊपर को पहुंचेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, पूरा सीधा हाथ सीधे तरफ, इसमें पूरा शरीर के अंदर में हर अंग प्रत्यंग में से पूरा हम अपना मन को गुजारेंगे। इससे क्या होगा, आज तक हम मन का बात सुनते आए हैं, अब हम क्या करेंगे, मन को काम दे रहे हैं, मतलब हम धीरे धीरे मन का काबू में से बाहर आ रहे हैं। इस तरह हम पूरा शरीर को करने के बाद दूसरा एक स्टेप होता है जिसमें हम मन को बिल्कुल काम नहीं देते हुए लेटे रहेंगे, जिसको असली योग निद्रा बोलते हैं। इस तरह हम 15-20 मिनट बिना किसी संपर्क का ऐसा लेटे रहेंगे। इस तरह 5 मिनट हड्डियों में और शरीर में देखना और 15-20 मिनट बिना संकल्प का रहना, लगभग 35 मिनट का विधि है, जिससे हम 6-7 घंटा सोने से जो आराम मिलता है वो आराम 35 मिनट में मिल सकता है।
1: श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे योग निद्रा पर चिंतन श्री चैतन्य गुरु जी से। लीजिए, सुनिए यह संदेश।

बिल्कुल श्रोताओं, ये है आकाशवाणी सूरतकट का कॉटन सिटी चैनल। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे। खेतीहरा वास्ते जानकारी का विषय रहेगा जल संरक्षण एक आवश्यकता। 7:20 पर आप सुना करते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 266 को। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुना करते हैं सुबह 7:30 पर। इस कार्यक्रम में हम आपसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। सुबह 8:00 वक्त रहते हैं समाचारों का, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाते हैं। भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुबह 9:00 आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाते हैं। सुबह 9:10 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, एपिसोड संख्या 4। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:20 से। कार्यक्रम विवरण आप सुना करते हैं हमारे केंद्र से सुबह 6:50 पर, दिन में 12:00 और संध्या 6:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दिन में 12:05 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत रहेगा दिन में 12:30 पर। दिन में 12:50 पर किसान भाई अपने कार्यक्रम सुनेंगे खेत खलियान। जानकारी का विषय रहेगा उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्र अपनाएं। दिन में 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाते हैं। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम रहेगा महिला जगत। दिन में 2:00 वक्त रहता है समाचारों का हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अनुप्रसारित किए जाते हैं। दिन में 3 बजे से आप सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुना करते हैं युववाणी संध्या 5 बजे। सिराइके का समय रहता है संध्या 6:05 पर। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुना करते हैं चौपाल संध्या 7 बजे। फिल्मी भक्ति संगीत हम आपको सुनवाएंगे संध्या 7:45 पर। एक ही फिल्म से इसका समय रहेगा रात्रि 8 बजे। स्पोर्ट्स स्कैन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम ये आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। ये वक्त हो चला है समाचारों का। समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर समाचार अंग्रेजी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि सम्बोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमन्त्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांकपर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदनप्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भण्डारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अण्डमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति, सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का

कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: MEA spokesperson Randhir Jaiswal said that 3,567 Indian nationals were deported from the US during 2025. He said discussions regarding migration and mobility are underway between the two sides. He added that the focus is on how to crack down on and curb illegal migration, while ensuring that this does not adversely affect legal migration. Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for the submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal said India should aim to increase its marine product exports from the current level of $8 billion to $30 billion over the next 5 years. He said the government is committed to expanding global market access for the fisheries sector. Addressing a press conference on the sidelines of the two-day national workshop on seafood exports commenced in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, the minister noted that India has concluded a record 9 free trade agreements over the last 3.5 years. In chess, Grandmaster R. Pragyanand has created history by becoming the first Indian to win the Norway chess title in Oslo with a final round victory over Germany's Vincent Kemer. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज जोन एआईआर ऐप पर, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। कार्यक्रम सुनिए खेतीहर वास्ते। आज की जानकारी का विषय है जल संरक्षण एक आवश्यकता।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, पानी की जी समस्या है, बात दिन ब दिन बढ़न ला रही है और देखने भी ला रहे हैं कि आने वाला जो को टेम है वो पानी खातर तरस है गो, क्योंकि आप जिया जिया दिन गुजरन ला रहे हैं और पानी जो को खारो हो ला रहे और कम हो ला रहे है, तो अपनी जी आ समस्या है आपन तो अब देखने मिलेगी। इनके अलावा जी अपनी आने वाली पीढ़ी है भी भी इंगो नतीजो है, इंगो जो को भुगतान है वो करना पड़ेगा। तो इस वास्ते किसान भाइयों, अब चाहे पानी आप पीने वाले की बात करा, चाहे पानी आप खेती खातर जो को पानी बरतन ला रहे बिंग की बात करा, क्योंकि खेती के अंदर भी आप खुलो पानी लगा ला रहे हैं और पानी तो ज़्यादा इस्तेमाल कर ला रहे हैं, जगह की वजह से पानी की जी कमी है वह अपने सामने आने ला रही है। और पीने वाला पानी जब तक बात करें किसान भाइयों, तो पीने वाला पानी है वो आप घरे बरतें चाहे बल आप की भीतरी है उसमें इस्तेमाल करा, पानी आप दोहन ज़्यादा कर ला रहे हैं, क्योंकि जगह नलका है टूंटी है बंगो जो को पानी है वो खुलो चलन ला रहे है, गड़ांगो होदगो जो को पानी है वो आप बेमतलब को खर्चन ला रहे हैं। तो पानी ने आप थोड़ो थोड़ो करके और हिसाब से सरसू जितो जरूरत है बिंग हिसाब से ही आप इस्तेमाल करा, तो आने वाली जी पीढ़ी है आने वाले जो को टेम है बिमा अपने पानी की जी कमी है महसूस को नहीं होनी, क्योंकि जिया जिया अब टेम टप्पी है और पानी अपन धरती को देखने आ रहे हैं, जो को स्टोरेज है जो को पानी धारण करने की जी क्षमता है धरती की वह बिल्कुल ही अब कम होने ला रही है, क्योंकि पानी है वो अपन निकाल चुके हाँ और जो को है बच्चों खच्चो वो पानी अब खारो हो गयो, तो अपने वो पीने के लायक तो है ही कोनी, इनके अलावा खेती के लिए भी वो ज़्यादा कारगर साबित कोनी होनी, क्योंकि पानी जो को है वो अपन ज़्यादातर 85% तक के वह है खेती में आप ज़्यादा उपयोग करा। तो किसान भैया, आप खेती में पानी लगाता टाइम बहुत सारे तरीका है जगह से आप पानी बचा सका, एक तो अपन ड्रिप सिंचाई प्रणाली है जगह को इस्तेमाल करना चाहिए, ये जो कि अगर थोड़ी थोड़ी बूंदा के हिसाब से पानी अपने पौधा के नज़दीक उड़ जाए और पौधा की जड़ा में जागे पौधा ने पानी है जो वो मिलते रहे, ये चुके हुए कि एक तो फालतू पानी खर्च को नहीं होनी, दूसरों पानी है जो को आपने वो सीधो पौधा की जड़ा में ही पुगे और बिंगो जो को पूरा फायदा है वो पौधा ले सके। और पानी अगर किसान भाइयों आप खुलो लगावांगा और खुला पानी लगाने से समस्या आ पैदा हो जाएगा, एक तो खरपतवार ज़्यादा पैदा हो जाए खेत गमा, क्योंकि जब खुलो पानी लगा से बाढ़ गमा तो बहुत सा ऐसा खरपतवार है जगह की वजह से अपनी फसल दब भी सके। जी आप बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है चाहे वह फुहारा सिंचाई प्रणाली है बिंगा माध्यम से अगर आप पानी लगा से तो एक तो जो खरपतवार निकालना जो खर्च है वो आपने बचेगा, दूसरी बात किसान भाइयों आक आप खेत के अंदर जगह रासायनिक उर्वरक है खाद है नाखन ला रहे हैं तो बंग वजह से अपनी जगह भूमि है कठोर होने ला रही है और इन वजह से पानी धारण करने की जो क्षमता है अपने धरती की अपनी भूमि की वह कम होगी। तो इस वास्ते टेम सर चेतना को काम वही है किसान भाइयों का आप जितों तक हो सके अपने जैविक खेती की तरफ ध्यान देना जरूरी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद है जैविक उर्वरक है बंगू इस्तेमाल करना चाहिए,

0: जबकि क्योंकि अगर पानी धारण करने की क्षमता है धरती की बढ़ जाएगी और आपने फसल भी शांतरी होएगी और अपनी भूमि है बा उपजाऊ भी हो जाएगी। इन अलावा किसान भाइयों पानी बचाने का और भी तरीका है जी आप देखना आ रहे हैं कि लंबा टाइम तक जगह चलने वाला पेड़ पौधा है बन लगा के जटा खाली पड़ी जमीन है सदा बाहर पौधा जगह है वे बट्ठा अपन लगा देवा तो एक तो जो को पर्यावरण है वो भी अपनों बढ़िया बने रहेगा। दूसरी बात आ के जो को पानी बरसना को जो को कारण बने वो भी क्या है कि अपने पौधों की वजह से बने पेड़ पौधों की वजह से बने तो अपने जट्ठे भी बंजर भूमि दिखे खाली जमीन दिखे बट्ठा अपन जाके पेड़ पौधा लगा देना चाहिए। इन अलावा आप बा फसलों को ही चुनाव करा बा किस्मों को ही चुनाव करा जबकि कम पानी पकड़ने वाली हुए और कम पानी के अंदर अपन बढ़िया फसल मिल जाए और अच्छा मुनाफा मिल जाए तो फिर अपन ज़्यादा पानी खर्च करने की जरूरत ही कोनी नहीं। इनके अलावा बहुत सा ऐसा नया तरीका है कृषि वैज्ञानिक है कृषि विशेषज्ञ है वे भी भांत भांति की राय देता रहे हुए का पानी बचाने का तरीका किस किस है और अपन जब तक हो सके तो जो को नमक का पानी है जो को लवणीय पानी है बिंग लिए भी कई तरह की किस्म है भी ईजाद कर रखी है तो बंगो इस्तेमाल करके आप खारा पानी के अंदर भी किस्म बीज लेवा और बाद में फिर आप थोड़ो थोड़ो करके अपना जो को मीठो पानी है बिंग सागे मिला के और आप बढ़िया फसल ले सका। और बात करें किसान भाइयों जी आप खुल्लो पानी लगाना पड़ा अपन कई बार जे का अपना कर जगह दूसरा यंत्र है फुहारा यंत्र है या फिर दूसरा ना है तो अपन खुल्लो पानी जो बाढ़ में लगाना पड़े तो अपन ऐसा छुपे लिखी है कि जगह खड़ा डोला है या फिर नहर है बिंग साफ सफाई कर लेनी जरूरी है क्योंकि जो को पानी आप ले गए आ रहा बाढ़ के अंदर तो वो पानी कई बार हुआ कि ज़्यादा खरपतवार खड़ा के अंदर हुआ है या फिर डोली बट्टा पर हुआ है तो फिर भी पानी धीरे धीरे आगे सरकने दिया जगह की वजह से पानी ज़्यादा खपत हुआ है और जमीन को जो समतलीकरण है वो अपन ने टेम सर पहले कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार ऊंची नीची जगह तो कई जगह पानी बेड़ो ज़्यादा हो जाए कई जगह पुग गई कौन पानी तो इस वास्ते अपन ने समतलीकरण करके और अच्छी तरह खड़ा डोला सुवार के और फिर अपन खेत का वहाँ पानी ले जाना चाहिए और जब तक हो सके तो बरसात को जो को पानी है वो अपन ने टेम सर इकट्ठो कर लेना चाहिए और जब जरूरत पड़े तो फिर अपन भी पानी को जो इस्तेमाल है वो आप कर सका। तो आम बातों को ध्यान रखिए अपन ने पानी बचाना जरूरी है सा पानी चाहे वो खेती खातर है चाहे अपने पीने के लिए है आने वाली जी की पीढ़ी है बिंगे लिए पानी बचाना है और पानी धीरे धीरे कम होने ला रही है तो जल आपूर्ति जकी है बा फिर आप फिर ही आप कर सका। तो आ बातों को ध्यान रख के आप पानी बचाना जरूरी है सा प्रणाम मैं चालू सा राम राम सा राम राम।
1: जल संरक्षण एक आवश्यकता, इस विषय पर आप जानकारी सुन रहे थे कार्यक्रम खेतिहर वास्ते में। आइए सुने लोक संगीत में बंदूखा और उनके साथियों को।

लोक भजन में आप सुन रहे थे बुंदू खां और उनके साथियों को। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरित मानस का। आज आप सुनेंगे किष्किंधा कांड में भाग संख्या 266 को। कलाकार हैं श्रीकांत पारगवकर।

बल तथा रूप के पुंज श्री राम और लक्ष्मण को तपस्वी वेश में वन में भटकते देख सुग्रीव को एक अव्यक्त भय हुआ। उन्होंने हनुमान को ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे मिलकर इस प्रकार वन में भटकने का कारण पूछने के लिए भेजा। श्री राम ने ब्राह्मण वेशधारी हनुमान को अपना परिचय देकर जानकी हरण की बात कही और फिर प्रश्नकर्ता का परिचय पूछा। प्रभु को पहचान कर हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। आज आपने सुना किष्किंधा कांड में भाग संख्या 266 को, और कलाकार थे श्रीकांत पारगवकर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपने दोस्त कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है ये प्रोग्राम लेकर। कुछ विषयों पर आपसे हम चर्चा करेंगे और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। बात करते हैं सबसे पहले अच्छा संगीत मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा संगीत मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली दवा है। ये आपके दिमाग में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है और खुशी देने वाले रसायनों जैसे डोपामाइन को बढ़ाता है। ये मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनाओं को व्यक्त करने का एक बेहतरीन माध्यम है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संगीत ही एक अच्छा माध्यम है। तनाव और चिंता कम करना, शांत और धीमी गति का संगीत जैसे शास्त्रीय संगीत या प्रकृति की आवाजें हृदय गति को स्थिर करती हैं और दिमाग को आराम देती हैं। जैसे कि मार्कोनी यूनियन का गीत दुनिया के सबसे सुकून देने वाले गानों में से एक माना जाता है। भावनाओं को व्यक्त करना, जब आप उदास या अकेला महसूस करते हैं तो ऐसे बोल वाले गाने सुनना जो आपकी भावनाओं से मेल खाते हों, आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देते और राहत देते हैं। नींद में सुधार, रात को सोने से पहले सुखदायक संगीत सुनने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है और गहरी नींद आती है। ऊर्जा और मनोदशा को बढ़ावा देना, जोशीले और पसंदीदा गीत आपको ऊर्जावान बनाते हैं जिससे आप दिन भर सकारात्मक

महसूस करते हैं। ये होता है अच्छा संगीत, मानसिक आराम। हम सभी को अपने जीवन में संगीत सुनना चाहिए, जिससे कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुनवाते हैं आपको एक प्यारा संगीत, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में। फिल्म का नाम है मीरा का मोहन। गीतकार इंदिवर और संगीतकार अरुण पौडवाल।

बिल्कुल श्रोताओं, तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी और इसके साथ साथ तन और मन की स्वच्छता भी जरूरी है। बात करते हैं तन और मन दोनों की स्वच्छता एक दूसरे की पूरक हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तन की सफाई के लिए जहां नियमित स्नान, संतुलित आहार और व्यायाम जरूरी है, वहीं मन की शुद्धि के लिए योग, ध्यान और सकारात्मक विचारों का अभ्यास आवश्यक है। बल्कि ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती है तन और मन दोनों की स्वच्छता से। हमारे नियमित दिनचर्या में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करें और हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनें। शुद्ध आहार भी हमें हमारे जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। ताजा पौष्टिक भोजन करें और जंक फूड या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से बचें। चुस्त रहने के लिए रोजाना 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक योग या हल्का व्यायाम करें। पर्यावरण भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इसके अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। मन की स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता का अर्थ है विचारों की निर्मलता। मन की स्वच्छता का तनाव, क्रोध और ईर्ष्या रूपी विकारों को दूर करती है। ध्यान और प्राणायाम रोज सुबह 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक खबरों, व्यर्थ की चर्चाओं और मोबाइल पर अधिक समय बिताने से बचें। दया और क्षमा, दूसरों के प्रति दयालु रहें और पुरानी बातों या शिकायतों को नज़रअंदाज करें, तभी हमारा मन और तन स्वच्छ रह सकता है।

एक और गीत था आप सभी के लिए, फिल्म एक फूल दो माली से। आवाजें हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की, गीत और संगीत रवि का।

तो इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ बात करते हैं आगे। जल ही जीवन, जल ही जीवन है केवल एक कहावत नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य है। पृथ्वी पर मौजूद जीवन का हर रूप पानी पर निर्भर करता है। हमें दैनिक जीवन में इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बचत करने और इसे

मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना है। यह हमारे पाचन, तापमान नियंत्रण और कोशिकाओं तक पोषक तत्व पहुंचाने के लिए अनिवार्य है। फसलों की सिंचाई से लेकर हमारे भोजन तक, पानी के बिना कृषि व्यवस्था और खाद्य उत्पादन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारे पर्यावरण का संतुलन जल पर ही टिका हुआ है। जल संकट और हमारा दायित्व। धरती पर उपलब्ध पानी का बहुत छोटा हिस्सा, लगभग 3% ही पीने योग्य है। दिन प्रतिदिन के बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल का संरक्षण समय की मांग है। बारिश के पानी को व्यर्थ बहने देने की बजाय उसे इकट्ठा करना चाहिए। जल संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता फैलाएं और पानी का संतुलित उपयोग करें। जल बचाना केवल एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव है। इसे बचाना बहुत जरूरी है। हम सभी का कर्तव्य भी है कि जल को बचाएं, और जल ही हमारा जीवन है। एक और गीत फिल्म शोर से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में।

श्रोताओ, आइए प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं हरियाली और ये रास्ता फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से, अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। इस समय सुबह के 8 बजना चाहते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।

0: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले एफपीआई को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे।

0: कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब

0: केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
3: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
2: स्पीकिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सूरत, द प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड द सिटी स्पिरिट एंड इट्स ट्रांजिशन इनटू अ ग्रीन सिटी। He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
4: Under the revised framework, FPIs investing through the general

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदा, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इकतसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज़्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली ज़िलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इकतसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की ज़बरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। कल शाम दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में कायम है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुल्क बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को तरजीह देते हुए अपनी तेज़ रफ्तार इस्लाहात के साथ आगे बढ़ेगा।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया एक सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रही है और भारत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ इकतसादी तरक्की को मुतवाज़न बनाकर इस रास्ते पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले जनाब मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाले बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा दिया कि भारत की काबिल-ए-तजदीद तवानाई की 250 गीगावाट की सलाहियत

0: में से गुजरात अकेले ही 50 गीगावाट फराहम करता है, जो भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई का एक अहम पांचवां हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अमोनिया की तरफ मुंतकिल होने में एक बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार है, जो तवानाई के मैदान में खुद कफील बनने के लिए लाजमी है।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
0: सूरत में यकसर तब्दीली के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने शहर के जज्बे और इसकी सरसब्ज शहर में मुंतकिली की तारीफ की। उन्होंने सूरत के सर्कुलर आबी मईशत के मॉडल और कचरे से दौलत बनाने की पहल को सराहा, जो पिछले 12 साल में एक अवामी तहरीक बन गई है। सूरत पहुंचने के बाद वजीर आजम ने सबसे पहले हजीरा का दौरा किया और सनअती नीज बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन जाब्तों को मजीद आसान बनाया है जिनके तहत सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां FPIs सरमाया लगाती हैं। इस ताज़ा फ्रेमवर्क का मकसद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए सरमायाकारी को मजीद आसान बनाना और अमल दरामद की पेचीदगियों को कम करना है। तफसील मुंबई के हमारे नामेनिगार से।
2: इस ताज़ा फ्रेमवर्क के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां सरमाया लगा रही हैं उन्हें मज़ीद सहूलत दी जाएगी, क्योंकि बहुत सी बंदिशें ख़त्म कर दी गई हैं। RBI ने आम और तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौजूदा ज़ुमरों को मरकज़ी सरकारी तमस्सुकात और रियासती सरकारी तमस्सुकात को एक दूसरे में ज़म कर दिया है। माली साल 2026-27 के लिए मरकज़ी सरकारी तमस्सुकात के लिए सरमायाकारी की हद साल की पहली छमाही के लिए 4,62,490 करोड़ रुपये पर और साल की दूसरी छमाही के लिए 4,77,600 करोड़ रुपये तय कर दी है। रियासती सरकारी तमकसात के लिए जवाबी हदूद 1,53,043 करोड़ रुपये और 1,64,242 करोड़ रुपये भी तरतीब मुकर्रर किए हैं। ये ताज़ा हिदायत फौरी तौर से लागू हो गई हैं। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ज़िरात और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में 9,42,000 से ज़्यादा किसान जून के महीने तक खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल की यह मुहिम एक मुल्कगीर अवामी तहरीक बन गई है। इस मुहिम का आगाज़ ज़िरात और किसानों की बहबूद की मरकज़ी वजारत ने किया है, जिसका मकसद कीमियावी खादों के मुतबादल इस्तेमाल को फ़रोग देना, मिट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखना और मुस्तकिल ज़रई तौर तरीक़ों की हौसला अफजाई करना है। एक रिपोर्ट।
3: ज़राअत की वजारत ने बताया कि इस मुहिम के तहत अभी तक 17,800 से ज़्यादा बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 6,98,000 किसानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा तकरीबन 3,700 तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिनमें 1,57,000 से ज़्यादा किसानों को कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल, मिट्टी की जरखेज़ी को बरकरार रखने और साइंसी ज़राअत की तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। वजारत ने बताया कि इस तरबियत का मकसद की तवील मुद्दती जरखेज़ी और कीमियावी खादों पर ज़्यादा इन्हिसार में कमी लाना है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरों की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी करके इसे 7 जून तक कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई एक पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की रात तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। CBSE के मुताबिक उसने तलबा के मफाद के खातिर ये फैसला किया है कि ताकि दरख्वास्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त फराहम किया जा सके। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख का सबूत थी। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख 6 जून थी। वजीर खारजा डॉक्टर S. जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों फरीक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, जिसका मकसद अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाना है, जिनमें तजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और आवाम के दरमियान रवाबित शामिल हैं। जनाब खनाल अभी भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग

0: दौरान वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने में मदद मिलेगी। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत के पास नेपाल के साथ एक वसी तर एजेंडा है जो तरक्याती तआवुन और आवाम के दरमियान रवाबित तजारत और सरमायाकारी तक मोहित है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत इस कसीर जहती शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अपनी आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की महज लफाजी और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न हो सकने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुनाफरत फैलाने वाले अपने सियासी मफादात के लिए बहुत सी गलत मालूमात फैलाकर और गुमराह कुन बातें करके कौंसिल में अपनी मौजूदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो जनरल असेंबली को दी गई कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर एक मुबाहिसे के दौरान मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। अमरीकी फ़ौजों ने ईरान के उन 4 ड्रोन्स को मार गिराने के बाद जिन्होंने इलाकाई समंदरी ट्रैफिक को निशाना बनाया था, आबनाए हुरमुस के करीब ईरान की साहिली निगरान रडार तंसीबात पर हमला किया है। अमरीकी मरकजी कमान ने बताया कि उसने मजीद हमलों से बचने के लिए ग्रुप और किशम जजीरे पर ईरान के साहिली निगरान रडार मकामात पर हमला किया है। यह हमला 3 महीने से जारी इस जंग में ताज़ा तरीन हमला है जिसकी वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान अमन बातचीत में जारी तातुल में और भी शिद्दत आ गई है। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें रुकी हुई हैं। इन कोशिशों में जिस बात की वजह से तातुल आगाया हुआ है, ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों में से अरबों डॉलर जारी करने का ईरान का मुतालबा। ईरान के अफसरान ने किसी अबूरी समझौते पर पेशरफ को फंड्स के इंजमात को ख़त्म करने से जोड़ दिया है, जबकि अमरीका मुजाकरात में इस मामले पर पीछे हटने से हिचकिचाता रहा है क्योंकि वो इस मामले को मुजाकरात का एक अहम पहलू समझता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब।
0: अब जबकि केरल में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो चुका है, भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के शिमाली ज़िलों में 9 जून तक नहायत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मल्लापुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगाड अज़ला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलबत्ता कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर आखिरी मरहले में हराकर ये जीत हासिल की है। नॉर्वे शतरंज के मुकाबले में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा लेने वाले प्रज्ञानंद ने इस मुकाबले का बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम किया है। इन मुकाबलों के दौरान उन्होंने आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 मरतबा हराया है। गोवा के शहर मरगांव में जारी सैफ फुटबॉल खवातीन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है। भारत अब तक 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने गुजरात के शहर सूरत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक अवामी रैली से खिताब को अपनी 6 सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में अखबार की 6 सुर्खी है, भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इकतसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की ज़बरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में 18 नमो पार्कों की शुरुआत, इसी साल लगेंगे 15 लाख पौधे। अखबार इंकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान को नुमाया किया है कि इंसानियत और इंसाफ के सामने AI सबसे बड़ा चैलेंज, मसनूई ज़हानत के जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल पर जोर। अखबारात ने सनअती हल्के के इस रद्दअमल को अहमियत दी है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के एरानात सरमायाकारी बढ़ाने वाले। इसके अलावा अखबारात ने मीनाक्षी मदन राय की पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने की खबर को भी

0: सफे अव्वल पर जगह दी है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इक्तसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज़्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली ज़िलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल के 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड के 16.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ जोन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। श्रोतो लीजिए, सुनिए भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के हमारे कलाकार हैं नरेंद्र चंचल और उनके साथी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं नरेंद्र चंचल और उनके साथी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, भजनों पर आधारित। कलाकार है नरेंद्र चंचल और उनके साथी।

0: भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, कहा राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की। और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की बढ़ोतरी दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश गरीबों के लिए व्यापक अवसंरचना विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया और कहा कि भारत हरित भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। वे आज भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
3: हमारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस है, उसे लेकर के हमारी ग्राम चौपालें लगातार चल रही हैं। अभी गांव वालों के साथ आगे बिजली की, पानी की, खेती की, क्यारी की, यहां और क्या हो सकता है उसके लिए लगातार हम बात कर रहे हैं। गांव की यहाँ पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो मेरे गाँव के नौजवान को यहाँ रोजगार मिलेगा। हम सरकार रोजगार देना चाह रही है, हम प्राइवेट स्तर पर भी देना चाह रहे हैं और वो निजी अपना कोई कारोबार प्रारंभ करें, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से आज मैं इस खारी का लांबा गांव में हूं, ये बहुत अच्छा गांव है। निश्चित रूप से हमारी सरकार का और डबल इंजन की सरकार का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने खारी का लांबा ग्राम पंचायत में नया कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने और कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित करने की घोषणा की। साथ ही विद्यार्थियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में

0: विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने का भी आश्वासन दिया। जयपुर में इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन के इस फूड एक्सपो का कल शुभारंभ किया। ये एक्सपो राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ की ओर से लगाया गया है। एक्सपो का उद्देश्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों, निर्माताओं, डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मंच उपलब्ध कराना है, जिससे व्यवसाय विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर बैरवा ने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फूड इंडस्ट्री, कृषि उत्पादों और के संवर्धन, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: हमारे व्यापारियों के द्वारा फूड एक्सपो का यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, अपने स्टॉल लगाई है और एक छत के नीचे हर प्रकार की ब्रांड, हर प्रकार की चीजों की यहाँ प्रदर्शनी लगाकर निश्चित रूप से व्यापार जगत को एक छत के नीचे लेकर जो ये एक नवाचार किया है, इससे व्यापार बढ़ेगा। इससे हर व्यक्ति, हर ग्राहक और हर व्यापारी एक दूसरे से मिलकर हो सकता है और बहुत बड़ा उद्योग मिल सकता है, व्यापार बढ़ सकता है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। भारत पाक सरहद पर स्थित जैसलमेर जिले में सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: इसमें सीमावर्ती क्षेत्र की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रतिवर्ष 163 का ये ऑर्डर निकलता है, जिसमें कि ये प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी एक चुनौती जो जैसलमेर जिले की सीमा पर हम पाई जाती है वो यही है कि जो पाकिस्तानी सिम है वो यहाँ 3-4 किलोमीटर तक उसका वो फंक्शनल रहता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमने गृह मंत्री महोदय की जानकारी में भी हम लोग लेके आए थे। रूटीन के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक हमारी सालाना एक एक्सरसाइज रहती है, जिसके तहत फिर हम लोग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई हुई।
0: राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचारों के लिए आमंत्रण मांगे हैं। विभाग की सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के प्रभावी समाधान, आजीविका बढ़ाने, सतत विकास तथा समाज के कल्याण में योगदान देने वाले नवाचारों को पहचान प्रदान करना और उन्हें व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। विभाग ने ऐसे नव प्रवर्तकों, किसानों, विद्यार्थियों, स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों से अपने नवाचार प्रस्तुत करने को कहा है। इच्छुक प्रतिभागी अपने नवाचार का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है।

0: भीलवाड़ा में कल दिन का पारा 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं जयपुर में 7.2, कोटा में 6.6, अजमेर में 6 और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रात का पारा भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस नए मौसम तंत्र का असर अगले 2 दिन जारी रहने की संभावना है। इस दौरान आंधी चलने और बरसात होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, कहा राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अगला कार्यक्रम सुनिए, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, एपिसोड संख्या 4, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।
2: ग्रामीण के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी, आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आप?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था, क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था, क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
3: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
3: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग

0: ने इसको शेयर किया, जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते, तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
1: आप जिस तरह से यह कार्य करके यह साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
0: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
1: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
0: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे

0: तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
1: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया था। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ जोन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतकट का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म लावा से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार RD बर्मन।

श्रोतों लीजिए सुनिए प्रोग्राम का अगला गीत, फिल्म सूर्या से, आवाज अलका याग्निक की। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। अगला गीत फिल्म जवाब हम देंगे। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोतम लीजिए, सुनिए फिल्म क्रांति से ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, आइए सुने फिल्म कुंवारा बाप से ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और महमूद की। इस गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीतकार राजेश रोशन।

0: हाय हाय हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए, बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूं, मंदिर में रख दूं। पंडे ने देखा, वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा, बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई, दी लाख दुहाई, वो एक न माना, पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया, सड़कों पर बेचा, गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला, कचरे में डाला। फिर बारिश आई, अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की, मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा, मैं वापस भागा।

0: आगे क्या बोलू यारा मैं पापी दिल से हारा,
1: आगे क्या बोलू यारा मैं पापी दिल से हारा।
0: बेटा तेरे किस्से पे दिल मेरा रोए, जिए तेरा मुन्ना भाई हो

मोहम्मद रफ़ी और महमूद की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म कुंवारा बाप से। लीजिए सुनिए, हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। कुंदन कटारिया का आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे अभिनेता सुनील दत्त की जयंती पर कुछ फिल्मी नगमे और बात करेंगे उनकी जीवन की। आज ही के दिन 6 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था। पंजाब पाकिस्तान के झेलम जिले के खुर्दी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। भारतीय सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता थे जिनको पर्दे पर देखकर एक आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की झलक देखता था। सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। हिंदी सिनेमा जगत में सुनील दत्त को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके किरदार वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते थे और उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह उज्जवल और प्रभावशाली रहा। सुनील दत्त बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। बलराज साहिनी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में उन दिनों स्थापित हो चुके थे। इसे देखते हुए उन्होंने अपना नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख लिया और ऐसे थे अभिनेता सुनील दत्त जिनकी आज जयंती है। सुनवाएंगे आपको उन्हीं के किरदार के निभाए फिल्मी गीत। हमराज फिल्म से सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत रवि का।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है।

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपसे बात हो रही है अभिनेता सुनील दत्त की जयंती पर। सुनवा रहे हैं आपको उन्हीं के किरदार के निभाए कुछ गीत। उनके जीवन की बात करें तो जैसे जैसे समय बीता, सुनील दत्त मुंबई आकर एक परिवहन सेवा के बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में काम किया, जिससे उनको 120 रुपये महीने के मिलते थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 1955 से 1957 तक सुनील दत्त संघर्ष करते रहे। हिंदी सिनेमा जगत में अपने पैर जमाने के लिए वे जमीन की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे थे। उसके बाद सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में पढ़कर स्नातक किया। सुनील दत्त ने रेडियो सीलोन की हिंदी सेवा के उद्घोषक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, जहां वे फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे। ऐसा जीवन था सुनील दत्त का। एक और गीत उनकी फिल्म का, महेंद्र कपूर की आवाज में, गुमराह फिल्म से, गीतकार साहिर और संगीतकार रवि।

श्रोताओं, बात हो रही है आपसे अभिनेता सुनील दत्त की जयंती पर। सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में काम किया। अपनी पहली फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने इस फिल्म के बाद राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी फिल्में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म अधिक सफल नहीं हुई। उनके जीवन की गाड़ी की अगर बात करते हैं तो सुनील दत्त ने मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान एक आग की दुर्घटना में नरगिस को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया। इस हादसे में सुनील दत्त काफी जल गए थे और नरगिस पर भी आग की लपटों का असर पड़ा था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके स्वस्थ होकर बाहर निकलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नरगिस 11 मार्च 1958 में सुनील दत्त की जीवन संगिनी बन गई। उनकी एक और फिल्म मदर इंडिया, जिसके गीत आपको सुनवाते हैं, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है शकील ने और संगीत नौशाद का।

श्रोतो, ये गीत था फिल्म मदर इंडिया से और आपसे बात हो रही है अभिनेता सुनील दत्त की जयंती पर। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खास पहचान और लोकप्रियता मिली। उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका निभाई जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफ़ी नाराज है और इसी की वजह से विद्रोह कर डाकू बन जाता है। साहूकार से बदला लेने के लिए वे उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है, लेकिन इस कोशिश में अंत में वह अपनी माँ के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर वे दर्शकों के दिल में जगह बनाने में सफल रहे। ऐसे थे अभिनेता सुनील दत्त। एक और गीत उनकी फिल्म का चिराग से, मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

शोधो इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत अभिनेता सुनील दत्त की जयंती पर यह कुछ फिल्मी नगमे और बात हो रही है उनकी जीवन की। उनकी सुपरहिट फिल्म वक्त 1965 में बनी। उनके सामने इस फिल्म में बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर और रहमान जैसे नामी सितारे थे। इसके बावजूद सुनील दत्त अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। सुनील दत्त ने सिने करियर का 1967 सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उस साल उनकी फिल्म मिलन, मेहरबान, हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में आई, जिनमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिले। इन फिल्मों की सफलता के बाद वे अभिनेता के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक हैं जिनकी फिल्मों ने 50 और 60 के दशक में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। मदर इंडिया की सफलता के बाद उन्हें फिल्म साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन जैसी सफल फिल्मों में भारतीय दर्शकों के बीच एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान मिली। एक और गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म गजल से।

मल्टी स्टार फिल्मों का अहम हिस्सा, पर अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता सुनील दत्त, जिनकी जयंती पर आपसे हम बात कर रहे हैं और सुनवा रहे हैं उन्हीं के किरदार के निगाहे कुछ फिल्मी गीत। सुनील दत्त ने सुने करियर पर नज़र डालें तो पता लगता है वह मल्टी स्टार फिल्मों का अहम हिस्सा रहे। फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्मों में जब कभी अभिनेता की

जरूरत होती थी वे उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। सुनील दत्त की मल्टी स्टार सुपरहिट फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, शान, बदले की आग, राज तिलक, काला धंधा, घोरे लोग, वतन के रखवाले, परंपरा, क्षत्रिय जैसी फिल्में प्रमुख हैं जिन्हें उन्हें मल्टी स्टार अभिनेता कहा जाता है। एक और गीत उनकी खानदान फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत रवि का।

सुनील दत्त के फिल्म निर्माण की अगर बात करें तो 1963 में फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के, जिसमें उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म के बाद अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया। ये फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित थी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सोम दत्त को बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया। सोम दत्त का फिल्मी सफर बहुत सफल नहीं रहा। सुनील दत्त ने 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद भी सुनील दत्त अभिनय से कभी ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं रहे। सुनील दत्त की 70 और 80 के दशक में बनी फिल्में प्राण जाए पर वचन न जाए, नागिन, जानी दुश्मन और शान में उनकी भूमिकाएं पसंद की गई। इस समय में सुनील दत्त धार्मिक पंजाबी फिल्मों से भी जुड़े रहे, जिनमें मन जीते जग जीते, दुख बंजन तेरा नाम, सत श्री अकाल जैसी फिल्में प्रमुख हैं। अभिनेता के साथ साथ वो फिल्म निर्माता भी रहे। एक और गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आज और कल। इस गीत को लिखा है साहिर ने और संगीतकार रवि।

जी हाँ श्रोता हूँ, बात हो रही है आपसे अभिनेता सुनील दत्त की जयंती पर। सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और संयोग से लोकसभा के सदस्य बने। 1968 में वे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। राजनीति के बाद उन्होंने फिल्म निर्माता के रूप में 1980 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी में लॉन्च किया। ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, लेकिन फिल्म के प्रदर्शित होने के थोड़े समय के बाद ही उनकी पत्नी नरगिस का कैंसर की बीमारी की वजह से देहांत हो गया। नरगिस की कैंसर से हुई मृत्यु के कारण उन्हें इस बीमारी के प्रति, सामाजिक जागरूकता के प्रति बढ़ने की प्रेरणा मिली। सुनील दत्त ने पत्नी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। ये वो समय था जब सुनील दत्त सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। तो अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, राजनीतिज्ञ और समाजसेवी, ऐसे गुण थे सुनील दत्त में। एक और गीत लता और मुकेश की आवाज में, फिल्म मिलन से। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हिंदी फिल्मों के एंग्री यंग मैन और राजनीतिक तौर पर एक आदर्श नेता सुनील दत्त, जो इस दुनिया से, इस फिल्मी जगत से 25 मई 2005 को हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया था, लेकिन आज उनकी जयंती है। इन्हीं के गीत आपको सुनवा रहे हैं उनके किरदार के रूप में। सुनील दत्त मदर इंडिया फिल्म के बिरजू के रूप में या एक आदर्श नेता के तौर पर भी आज हमारे बीच मौजूद है। अगर उनके फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार की बात करें तो उनकी फिल्म मुझे जीने दो 1965 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार फिल्म खानदान के लिए, 1968 में पद्मश्री, 1995 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में जी

जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 2005 में फाल्के रत्न पुरस्कार, इन पुरस्कारों से उनको नवाजा गया। और प्रोग्राम के आखिर में एक और गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी कुंदन कटारिया को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इस बात के साथ, जब दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है, जब दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है, और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज आपने कुंदन कटारिया के साथ सुना। ये सुनील दत्त की जयंती पर कार्यक्रम था।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज राकेश नाथ की तरफ से

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है असली नकली। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत शंकर जयकिशन का है।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं ये गीत, जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत शंकर जयकिशन का है।

आइए अब सुनते हैं ये मधुर सा गीत। फिल्म का नाम है ज़ेल थीफ, आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। एस डी बर्मन ने इस गीत को संगीत दिया और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

आइए श्रोता, अब सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है कामचोर। शबा करे, इस गीत को हमने लिया है फिल्म कोहिनूर से। आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत नौशाद का है।

सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है अजनबी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत है आर डी बर्मन का।

फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर FM 100.1 मेगाहर्ट्ज। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं कश्मे वादी। इस फिल्म का ये गीत आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

आइए अब सुनते हैं शर्मीली। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। नीरज ने इस गीत को लिखा और संगीत है SD बर्मन का।

0: यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा
0: यहाँ

आइए श्रोताओं, सुनते हैं जंगली, इस फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी है। आइए सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम है मधुमति, आवाज दी है मुकेश ने। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और सलिल चौधरी का संगीत है।

0: आइए सुनते हैं रामपुर का लक्ष्मण। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। मजरू ने इस गीत को लिखा और संगीत आरडी बर्मन का है।
1: Mm-hmm.

0: आइए सुनते हैं थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का ये गीत आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गुलजार ने इस गीत को लिखा और संगीत खय्याम का है।
1: कस्में दी, लालच दिए, पर जाने वाले लौटे नहीं। सिर्फ राहों पे उड़ते हुए सन्नाटों का गुबार छोड़ गए। कब तक कोई सन्नाटे फांकता रहे? जिंदगी तो चलती रहती है, सिर्फ गिले रह जाते हैं। और वफाओं पे झुके हुए सजदे, शायद कोई आए, कोई आवाज दे कहीं से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटनचिड़ी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब श्रोता सुने कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30। 12:50 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें आज जानकारी का विषय रहेगा उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्र अपनाएं। 1:05 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत। इसमें जानकारी के विषय रहेंगे महिलाओं का करियर पत्रकारिता के क्षेत्र में।

समर स्किन केयर और मेकअप टिप्स। इसके अलावा बहने किडनी स्टोन में डाइट का रखे ख्याल और हर घर की कहानी आज खाने में क्या बनाएं, इन विषयों पर जानकारी बहने सुन सकती हैं। 2 बजे श्रोता दोपहर समाचार सुन सकते हैं। फिल्म संगीत का समय रहेगा 2:30। 3 बजे श्रोता हमारी उर्दू सर्विस सुन सकते हैं। युवाणी का समय रहेगा संध्या 5 बजे। इसमें शिक्षा का महत्व, उस्ताद योजना, इसके अलावा जानकारी के विषय रहेंगे वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री जनधन योजना और आज का इतिहास विषय पर जानकारी। छह बजकर 5 मिनट पर संध्या श्रोता सुन सकते हैं सराइकी कार्यक्रम। और चौपाल का प्रसारण संध्या 7 बजे किया जाएगा। इसमें किसान भाई सुन सकते हैं, आंधी तूफान में बिजली के खंभों से रहें दूर, नीम का तेल से प्राकृतिक सुरक्षा बेहतर फसल। और इसके अलावा जानकारी के विषय रहेंगे पशुओं की परजीवियों से बचाव। इसके अलावा किसान भाई मौसम और बाजार भाव से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति संगीत का समय रहेगा रात्रि 7:45 पर और 8 बजे श्रोता एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन सकते हैं। 8:30 पर स्पोर्ट्स केन, इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। और सुगम संगीत का समय रहेगा 9:15। 9:30 पर श्रोता संस्कृति पत्रिका, इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम रहेगा राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका। और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसका प्रसारण कार्यालय किया जाएगा।

अभी श्रोता कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन छिड़ी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब श्रोता सुने फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत।

इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। यह है नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, मदन लाल, कीर्ति, सिदक वर्मा और प्रियांशी वर्मा। गांव खोखरा वाले श्री गंगानगर से विनोद बाराशाह, विशाल, विकास बाराशाह और रोशनी बाराशाह। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। उत्तम नगर दिल्ली से ये हमारे श्रोता है कमला रानी, बोध राज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। गांव नथारा पंजाब से हरजेंद्र सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ये है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है, ये है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहानुल हुदा। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका और मनी सहारन। ये हमें लिखते हैं गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, किरसन मायल, हनुमान सहारन, किडू राम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ये है हमारे श्रोता नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिट्टा और अलका मिट्टा। गांव बनवाला।

हनवंता फाजिल्का पंजाब से, विनोद मायल, शीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और इनका पूरा परिवार। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से ये है, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी और हसन सिक्का। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, बसंतराव भोजने, पीएस न्यावकर और तुषार करांगले। ये है गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत बेबी गरिमा बगड़िया। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है संगम। आवाज़ दी है मुकेश ने, इस गीत को लिखा हजरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है डबवाली हरियाणा से जेके बाकोलिया और सुनीता बाकोलिया ने। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से ये हमारे श्रोता है कैलाश घनश्याम और इनके साथ ही, और इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है माबुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे बसंतराज भोजने और इनके साथी। ये है शादुल शहर से रामकुमार रेवाड और चंद्रकला रेवाड, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर से ज्ञानचंद भगवंती देवी मेहुल पूनम कोमल चंदन अंकुश रवि कुमार लक्ष्य जाधव नेहा अंजनी पवन भूमिका भावना सोनू जानवी और है चाहत और नंदा। ये हमारे श्रोता है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या खुराना और एसके पप्पी। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। ये है नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी पिंकी साहनी अफजल मलिक संदीप मक्कड़ और निपी साहनी। चंडीगढ़ से सतीश सनेजा और विमला अनेजा। गामलोहगढ़ ठाकरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंगिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर गुरलाल अविराज और शुभदीप। बिल्लू सूद सुनीता सूद चांदनी आशीष सूद विश्वजीत। ये है मंडी केसरी सिंहपुर से। इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है पतंग।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है, ये हमारे श्रोता है सिद्धार्थ नगर दयारपुर बावली से, गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग। गांव जाखोद राजस्थान से ये है शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल, दिशा मोहला। और ये है नई बस्ती कंचजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेग हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। ये हमारे श्रोता है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। और ये हमारे श्रोता है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहराज जहां, ये लिखते हैं आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से। दादरी, ये हमारे श्रोता है जिन्होंने दादरी गेट भिवानी से हमें लिखा है, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। ये है हितेंद्र दास, ये हमें आसाम से लिखते हैं, गांव कल्याणा मलका, जिला बठिंडा से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर, मनिंदर और

ये है डॉक्टर बनवारी जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अलाबख्श, बेगम राबिया, शेख रहीमुना और दानिश आशीष शेख, गोविंदपुर सीकर राजस्थान से ही है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, फवारा चौक सिरसला जिला चूरू से ये है संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा और कार्तिक सोनगरा। ये है अलिका डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, क्रमजीत लखोत्रा, सर्वजीत लखोत्रा, रानी, सोनू और रजनी। और ये है मोहनलाल प्रजापत, माणक उषा, बालादेवी प्रजापत, तहसील भद्रानूप शहर से ये है गजानन सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, शाहिल राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू किनु और इनके साथी। और इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देव देवांगन। बहुत से हमारे श्रोता है जिनके नाम इस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं कर सकते, कार्यक्रम छोटा था, इसके लिए हमें खेद है। और आप सुनिए ये गीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। इसके अलावा आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी हमें सुन सकते हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनते हैं मेहदी हसन की गाई चंद गजलें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं मेहदी हसन की गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपने मेहदी हसन की गाई संत गजलें सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इसमें आज जानकारी का विषय है उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्र अपनाएं।

किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आपने ही क्षेत्र में किसान भाई लोग हैं जगह भांत भांत की फसलां बीजे और अपना किसान भाई कम लागत में ज़्यादा पैदावार लेने की सोचे, लेकिन इनके बावजूद भी खेती करता टाइम कई तरियांगी चूक हो जाए, बिंगी वजह से आपनों खर्चों भी लाग जाए और पैदावार भी पूरी कौन मिले। इन वास्ते किसान भाइयों टाइम टाइम पर अपना कृषि वैज्ञानिक या कृषि विशेषज्ञ जकी राय देवे या फिर खेती करने का जगह नया तौर तरीका बतावे, जे आप बांगे हिसाब से खेती करा तो आपने अच्छी पैदावार के साग सागे अच्छो मुनाफो भी मिले और आप जो खेती पर खर्चो करा तो बिंगी लागत में भी कमी आवे। यानी आप मोटे तौर पर यहाँ कह सका जे आप तकनीक पर आधारित खेती करा तो कम लागत में अच्छो मुनाफो कमा सका। जे टाइम पर आपने बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि जे आप टाइम पर बिजाई कर सा तो आपने उत्पादन पूरा मिलेगा और बिजाई करता टाइम अच्छा प्रमाणित उन्नत बीज ही आपा बीजा, जिसो आप 20-25% तक उपज बढ़ा सका। किसान भाइयों, कई बार यहाँ होवे कि आप बीज ने उपचारित करे बिना ही बीज दिया, जगह की वजह से कई तरियांगा बीज जनित रोग है जका अपनी खड़ी फसल में लाग जाए। जे आप कम खर्चे कमा निरोग और स्वस्थ फसल लेनी है तो बीज उपचार करनो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके अलावा माटी की जाँच करवा के बिंगे हिसाब से आप फसल बीजा और जितिक जरूरत है बिंगे हिसाब से ही यूरिया है या अन्य उर्वरक है।

तारशों कतार की जकी दूरी है बा भी सही और बराबर बना के रखा। इनकी वजह से एक तो पौधा ने पूरा पोषण मिलेगो और पौधा बढ़वार भी अच्छी लेगा और आपने उपज भी सांगोपांग मात्रा में मिलेगी। किसान भाइयों, आपने टाइम टाइम पर फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। जे आपा फसल अदल बदल करके बीजांगा तो कई तरियांगा जका रोग है या कीट है बाशु फसल को बचाव होवेगो। इनके अलावा किसान भाइयों, आपने मिलवा फसल बीजनी चाहिए। इन्हें आपा इंटरक्रॉपिंग भी कह देवा। कई बार यह हो जाए कि अगर आपनी एक फसल माड़ी होवे तो बिंग सागे भी जड़ी दूसरी फसल है बा अपनी जकी लागत है और जको मुनाफा है वो पूरा कर दे, तो आपने मिलवा फसल जकी है बा ज़्यादा फायदेमंद रहे। किसान भाइयों, आपने दलहनी या तिलहनी फसल बीजता टाइम जमीन में जिप्सम को प्रयोग जरूर करना चाहिए। ईशु पैदावार भी अच्छी होगी और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। अब बात करें किसान भाइयों पानी की, क्योंकि थे भी जानो कि हर फसल ने जरूरत के हिसाब से पानी देना जरूरी है, पर अब दिन ब दिन पानी की कमी आपने सामने आने लाग रही है, जगह की वजह से आपने पानी को सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जे आप फंवारा पद्धति या फिर खाड़े की बजाय पाइपलाइन को इस्तेमाल करा तो पानी की जकी बचत है बा आप काफ़ी हद तक कर सका। इनका सागर सागर आप बूंद बूंद सिंचाई को तरीको भी अपना सका ताकि कम पानी छू भी आप अच्छी उपज ले सका। किसान भाइयों, फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए ताकि आप कम पानी होने के बावजूद फसल ने पूरी सिंचाई दे सका। किसान भाइयों, आप अपनी फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग है जो ज़्यादा करा, जगह की वजह से भूमि प्रदूषण तो हो गई है, इनका सागर सागर जगह मित्र कीट है वे भी नष्ट हो जाए। जे आप कीटनाशकों की बजाय जैविक खाद, नीमनाशी या फिर जिया प्रकाश पाश, फेरोमान पाश आंगो इस्तेमाल करा तो आप फालतू में होने वाला खर्चा इशू तो बचांगा ही, इनके अलावा मित्र कीट है बाने भी बचा सका। उत्पादन लागत कम करने खातर जठे तक हुए जैविक खेती ने आप बढ़ावा देना चाहिए। किसान भाई लोगों, अपना कृषि विशेषज्ञ से राय लेके अगेती पछेती फसल लेनी चाहिए। इशु आपने वो फायदो है कि आप विषम परिस्थितियों में भी आमदन बढ़ा सका। टाइम टाइम पर आपने कृषि विज्ञान केंद्र का कार्यक्रम में भी भाग लेता रहना चाहिए जिसे आपने खेती करने का नया तौर तरीका सीखने मिले। जब भी आप अपनी उपज मंडी में लेके जावा बीस रुपये लिए आप उपज ने अच्छी तरह सुखागे और अच्छी तरह छानगे और ग्रेडिंग करके ही बाजार में लेके जावा ताकि आपने अच्छा भाव और पीसा टका मिले। जब भी आप खाद बीज और दवाई खरीदने जावा तो दवाई की और खाद बीज की मियाद जरूर जांच पर कर लेनी चाहिए और खरीदने के बाद पक्को बिल या रसीद जरूर लेनी है। इशू आप नकली खाद बीज या दवाई शू होने वाले नुकसान से बच सका। जे आपने कने बिल या रसीद हो सी तो अपन नुकसान की भरपाई लेने का पूरा हकदार हाँ, तो इन बात को अपन ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके सागे सागे किसान भाइयों, आप अपनी फसल को बीमा जरूर करवा लेना चाहिए। इसी बहुत सी स्कीमें हैं जकी अलग अलग अवधि का बीमा करे। कई बार हो कि अपनी खड़ी फसल में मौसम की मार पड़ जाए, जहाँ कई बार ओलावृष्टि हो जाए, कई बार ज़्यादा बरसात होने से भी फसल खराब हो जाए, कई बार सूखो पड़ने की भी स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा बहुत सा कारण है। कई बार खड़ी फसल में आगजनी हो जाए, तो ईशा मौका पर जे आपनों फसली बीमो करवाइड है तो ईशा जोखिम से आप बच सका। किसान भाइयों, अपना जगह कृषि यंत्र है बंगी भी टाइम टाइम पर सार संभाल करता रहना चाहिए। आपने हमेशा उन्नत कृषि यंत्रों को ही उपयोग करना चाहिए। जे आप कृषि यंत्रों की टाइम पर सार संभाल करता रहें तो टाइम के सागे सागे आप अपनी खेचड़ और पीसो टको भी बचा सका। इनके अलावा किसान भाइयों, आपने नकदी और बागवानी फसलों ने भी अपनाना चाहिए ताकि मोटे पर आपने नगद पीसो टको भी मिलते रहे। किसान भाइयों, खेती बाड़ी का सागे सागे आप पशुपालन भी करा और किसान भाइयों टेमो टेम पशुओं की देखभाल, दवाई पानी, नीराचारी करनी भी जरूरी है। जे आप पशुओं ने बांगी उम्र के हिसाब से और दुधारू पशुओं ने अच्छो संतुलित आहार देवा तो आप अच्छो फायदो ले सका। संतुलित आहार की आप बात करें तो संतुलित आहार वो वह जगह गमा जल, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन और वसा ये छह तरियां का तत्व हुए बिना आप संतुलित आहार के वहाँ। जी हाँ, जल की बात करें तो जल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर आप इन्हें जरूरी कम समझा जो कि बहुत बड़ी गलती है। जे पशु खुले बाड़े में खुला खड़े तो बीज या सफाई की और साफ पानी की व्यवस्था होनी जरूरी है, क्योंकि पशुओं ने टेम सारू पानी नहीं दे जाए तो पशुओं को नुकसान हो सके। सर्दी गर्मी के हिसाब से भी पानी को तापक्रम रख के पशुओं ने पानी पिलाना चाहिए। जठे तक खनिज लवण की बात है तो पशु आहार का मां खनिज लवण होना बहुत जरूरी है। कई बार देखा कि पशुपालक भाई पशुओं ने खनिज लवण देना जरूरी कौन समझे, जिस पशुओं में कई तरह की बीमारियाँ हो जाए, पशु माटी कपड़ा खावन लग जाए, पशु कमजोर भी हो जाए, तो टेमो टेम आहार का मां खनिज लवण आप देवता

0: तो बढ़िया रेवे। पशु आहार गमा कार्बोहाइड्रेट होना भी जरूरी है, जगह की पूर्ति आपा आहार गमा अनाज और चारा से कर सका। पशुपालक भाई इन बात को भी ध्यान रखे कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा को अच्छा स्रोत है, इंगा सागे वसा और प्रोटीन पचाने गमा भी अच्छी भूमिका निभावे। इंगा अलावा पशुओं का संतुलित आहार गमा विटामिन प्रोटीन वसा ये सगला होना भी जरूरी है। इन वास्ते अच्छी तरह मिला के ही आपा आहार तैयार करा। अब बात करा आपा संतुलित आहार तैयार करनो की है। संतुलित आहार गमा खनिज लवण गसा गसा गए सूखो चारो हुए या सूखी तूड़ी चाहे वह कणक घी होवे या जौ घी और हरियो चारो। हरिया चारा गमा जिया बरसीम काउपी सोयाबीन ये सब प्रोटीन युक्त है। कम प्रोटीन की मात्रा वाला चारा जिया मक्का बाजरा जई अंजन घास दूब घास ये सब। इनके अलावा आपा दाणो भी तैयार करके पशुओं ने दे सका, जहाँ कम प्रोटीन वालों दाणो जको अनाज के रूप में होवे और ज़्यादा प्रोटीन वालों दाणो जको दाल के रूप में होवे। ज़्यादा प्रोटीन वाले दाणा में काउपी काला चना घोड़ा चना बंगाली चना आ सगला में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होवे। इनमें आपा मूंगफली सरसों अलसी बिनोला या नारियल की खड़ के रूप गमा भी आपा पशुओं ने उम्र के हिसाब से मात्रा तय करके दे सका। कई बार आपा देखा कि पशुपालक भाई छोटा मोटा पशुओं ने एक जैसी मात्रा में ही आहार देवे, लेकिन आपा ने छंटनी करके ही फिर आहार की मात्रा तय करनी है। जहाँ दुधारू पशुओं ने अलग मात्रा के हिसाब से दाणो चारो देनो है। जहाँ मान लो कोई गाय 10 किलो दूध देने लाग रही है, सागे बाम गाय गर्भवती भी है, बिना आपा थोड़ो चारो देवन लाग रहा हाँ तो पशु दूध तो घटासी ही कमजोर भी हो जासी। इन वास्ते पशुपालक भाई इन बात को ध्यान रखे कि प्रत्येक पशु ने उचित आहार पशु की जरूरत के हिसाब से देवे। जको आहार आपा पशु ने देवन लाग रहा हाँ बिमे 2/3 भाग मोटो चारो जिया बरसीम तूड़ी और 1/3 भाग दाणो होनो जरूरी है। जिया मान लियो एक गाय जकी को वजन 4 क्विंटल का लगभग है और 10 लीटर दूध देवे, बिना आपा ने 20 किलो बरसीम 15 किलो तूड़ी और 3 किलो मिश्रित दाणो देनो चाहिए। 10 लीटर से ज़्यादा अगर दूध देने वाला पशु है तो आपा ने बिना 2.5 किलो अतिरिक्त चारो और 1 किलो ज़्यादा दाणो देना चाहिए, जिसू पशु अच्छो दूध देवे और अच्छो गुजारो कर लेवे। किसान भाइयों 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल शरीर भार की गाय ने एक दिन औसत के हिसाब से 2.5 किलोग्राम सूखो चारो और भैंस ने 3 किलोग्राम सूखो चारो देनो चाहिए। आहार जको आपा तैयार करियो है वो संतुलित होना जरूरी है ताकि पाचन क्रिया अच्छी तरह हो जाए। एक दिन में 2 बार आहार देनो चाहिए और अंतराल की बात करें तो 8 से 10 घंटा को अंतराल होना चाहिए। आहार में कोई भी तरह की दवाई जहरीला तत्व या जहरीलो चारो नहीं होना चाहिए। इनके अलावा एक बात को और ध्यान रखना है कि जब भी आप पशु चारा में ज्वार कड़बी रिजको देवा तो काट के अच्छी तरह कुत्तर करके ही देवा। पर अब मैं खेत का नहीं चालूँ सा राम राम सा राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान, इसमें आज जानकारी का विषय था उत्पादकता वृद्धि के मूल मंत्र अपनाएं। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन भी किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सवाई माधोपुर के

0: भंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T-124 रिद्धि नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। वहीं वन विभाग ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। पर्यटकों को नालघाटी वन क्षेत्र में बाघिन T-124 रिद्धि दो नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। पर्यटकों के अनुसार शावक एक से दो सप्ताह के हैं तथा इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। 2019 में जन्मी बाघिन रिद्धि प्रसिद्ध बाघिन मछली की वंशज है तथा एरोहेड की बेटी है जो तीसरी बार माँ बनी है। शावक देखे जाने की खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। वहीं वन विभाग की ओर से क्षेत्र में सघन निगरानी और गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई हैं। देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आने वाले पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में 23 जून को आयोजित किया जाएगा। और अब मौसम। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बरसात दर्ज की गई। प्री मानसून गतिविधियों के चलते करौली, दौसा, डूंगरपुर, नागौर और जयपुर सहित कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सबसे अधिक 14 मिलीमीटर पानी बीकानेर के डूंगरगढ़ और झालावाड़ के डग में बरसा। 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि विभाग ने 8 जून से फिर से तापमान में बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त की है। इस बीच अगले 24 घंटे तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामेगारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। बहनें सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को उर्मिला का नमस्कार। बहनों, हम आज अपने समाज की ओर देखें तो हमारे समाज में कई तरह के बदलाव आए हैं। आज के समय में महिलाएं उन जिम्मेदारियों को भी बहुत आसानी से निभा रही हैं जो केवल पुरुषों के लिए आरक्षित थी। इसीलिए रूढ़ियों को तोड़ने के लिए उन्हें श्रेय मिलना ही चाहिए। बहनों, पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं ने बड़ी शालीनता, साहस और बुद्धिमता के साथ अपनी पहचान बनाई है। ऐसी कई महिला पत्रकार हुई हैं जिन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और पूरे लगन से

रिपोर्टिंग की। पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो महिलाओं के लिए बहुत ही गतिशील और चुनौतीपूर्ण रहा है और महिलाओं ने सशक्त काम किया है, मेहनत की है और इसे एक सशक्त कैरियर के रूप में अपनाया भी है। प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल और टेलीविज़न न्यूज़ तक महिलाएं राजनीतिक विश्लेषण, खोजी पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जैसे जटिल क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। महिलाएं मीडिया में कई तरह की भूमिकाएं निभा रही हैं और अपना शानदार कैरियर बना रही हैं। महिलाएं न्यूज़ एंकरिंग और रिपोर्टिंग का काम भी बखूबी कर रही हैं। टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डिबेट भी कर रही हैं और इसके अलावा लाइव रिपोर्टिंग का काम भी महिलाएं बखूबी कर रही हैं। घोटालों, भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों की गहराई से पड़ताल करके सच्चाई को सामने लाने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समाचार पत्रिकाओं, वेबसाइट्स और न्यूज़ चैनलों में कंटेंट का चयन करना और संपादकीय नेतृत्व करना, ये सब काम भी महिलाएं इस क्षेत्र में बखूबी कर रही हैं। इसके अलावा बहनों, महिलाओं ने घटनास्थल के दृश्यों और सच्ची घटनाओं को कैमरे में बहुत अच्छे तरीके से कैद भी किया है। ये जो पत्रकारिता का पेशा है, ये महिलाओं को समाज के मुद्दों को उठाने और सशक्त आवाज़ बनाने का एक बेहतर तरीका है। पोर्टल्स, यूट्यूब और पॉडकास्ट के उदय से महिलाओं के लिए काम की स्वतंत्रता बढ़ गई है और महिलाओं ने नए कदम भी उठाए हैं और नई पहचान भी बनाई है। बहनों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सच लिखने की जिद और हौसलों की उड़ान है, कलम की धार से रोशन जहां सारा जहान है। झुके ना जो कभी किसी के भी दबाव में, वो महिला पत्रकार सच की सच्ची पहचान है। जी हाँ बहनों, महिला पत्रकार सार्वजनिक चर्चा को आवाज़ देने, सार्वजनिक चर्चा को सही आकार देने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और हाशिए पर पड़ी आवाज़ को बुलंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्रकारिता ने महिलाओं में बहुत बदलाव किए हैं और महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी उन्हें कई तरह की व्यवस्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अनियमित कार्य समय यानी शिफ्ट्स का समय और फील्ड जॉब के कारण उनके निजी जीवन और कैरियर के बीच संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ रूढ़िवादी क्षेत्रों में पुरुष प्रधान मानसिकता का सामना भी महिलाओं को करना पड़ता है। ग्राउंड रिपोर्टिंग, आपदा या दंगों के समय फील्ड वर्क में सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती महिलाओं के सामने होती है। बहनों, इतनी चुनौतियों के बावजूद भी महिलाएं पत्रकारिता के महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं और विविध दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा बहनों, महिला पत्रकारों द्वारा जो भूमिका निभाई जा रही है, उनको पहचानना और ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक समर्थन मिलना चाहिए और संसाधन भी प्राप्त होने चाहिए। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तकनीकी ज्ञान की भी ज़रूरत है और व्यवहारिक ज्ञान, ये दोनों बेहद ज़रूरी हैं। इस बात को तो हमें भी समझना ही होगा। बहनों, इस क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें मजबूत भाषा और संचार कौशल का भी ज्ञान प्राप्त करना होगा। डिजिटल तकनीकी ज्ञान की समझ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल सुरक्षा की समझ, ये सब हम महिलाओं को सीखना होगा, तभी हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और अपनी पहचान बना सकती हैं। नेटवर्किंग और जनसंपर्क, ये सब महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं और इस क्षेत्र में सफल होने के लिए निरंतर अभ्यास और जमीनी अनुभव की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। इन बातों को समझकर हम इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों अब बात करते हैं हमारी किडनी यानी गुर्दे की। तो बहनों आजकल हम ये बहुत आम सुनते आते हैं और एक आम समस्या हो गई है हम सब के लिए कि किडनी में स्टोन यानी गुर्दे की पथरी होना एक आम बात है। और यदि गुर्दे में पथरी हो जाती है तो ये बहुत गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। यदि हम सही आहार लेते हैं तो हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये रोग बढ़ता जाएगा और फिर ये समस्या बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसे ऑपरेट कर

मना पड़े तो इस समस्या में हमें तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी सहन करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याओं से बचने के लिए अच्छा ये होता है कि हम अपने खान पान पर ध्यान दें। तो यदि पथरी के निर्माण को रोकना चाहते हैं तो हम अच्छा या स्वस्थ आहार लें और भरपूर पानी पिएं। दिन में कम से कम हमें ढाई लीटर से लेकर 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए, ताकि जो पथरी है, पथरी बनाने वाली जो खनिज हैं वो बाहर निकलते रहें। इसके अलावा मौसम जो भी हो, हमें रोज़ नींबू पानी पीना चाहिए, और अब तो फिर गर्मी का मौसम है तो नींबू पानी पीना हमारी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा है, और यदि किडनी में स्टोन है तो आपको नींबू पानी ज़रूर पीना ही चाहिए। इसके अलावा खट्टे फलों का जूस भी पीना चाहिए, क्योंकि जो खट्टे फल होते हैं उनमें मौजूद साइट्रेट पथरी को बनने से रोकते हैं। इसके अलावा बहनों, यदि गुर्दे में पथरी है तो नारियल पानी एक बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक है, जो कि हमारी किडनी को साफ़ करने में मदद करता है। इसके अलावा एक आम धारणा है कि स्टोन होने पर कैल्शियम युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए, ये गलतफहमी है बहनों। किडनी में स्टोन होने पर भी हम कैल्शियम युक्त भोजन ले सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर वगैरह, लेकिन इसका सेवन हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहनों, अब गर्मी का मौसम है तो लौकी, कद्दू, तोरई जैसी सब्जियाँ खूब मिलती हैं, और यदि ऐसी समस्या है यानी किडनी में स्टोन की समस्या है तो हमें लौकी, कद्दू, तोरई जैसी सब्जियों का भरपूर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, और खीरा जो आजकल मार्केट में खूब मिलता है, इनका सेवन भी करना चाहिए हमें। इसके अलावा बहनों, हमें साबुत अनाज जैसे दलिया है, ओट्स है, इनका सेवन भी करना चाहिए, और ये साबुत अनाज तो वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा बाजरा या फिर ज्वार की रोटी और ब्राउन राइस भी हमें लेने चाहिए, जो कि फाइबर से भरपूर होते हैं। ये किडनी स्टोन के साथ साथ हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत लाभदायक हैं, ये सब हम जानते ही हैं। इसके अलावा बहनों, यदि किडनी में स्टोन है तो मूंग की धुली दाल प्रोटीन का एक सुरक्षित विकल्प है। तो ऐसे अपने खान पान का हम ध्यान रखें तो हम किडनी में स्टोन बनने से रोक सकते हैं, और स्टोन होने पर जो दर्द होता है उस तकलीफ़ से भी बच सकते हैं, और अच्छे खान पान से हम अपने सेहत को अच्छा बना सकते हैं। और सेहत अच्छी होना ज़रूरी है, साथ ही साथ मूड का अच्छा होना भी बेहद ज़रूरी है। तो अपने मूड को अच्छा बनाने के लिए आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, हमने ये तो जान लिया कि यदि किडनी में स्टोन है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए। अब इन बातों का हम ध्यान तो रख सकते हैं, पौष्टिक भोजन भी ले सकते हैं और किडनी में स्टोन ना हो, इसके लिए हम इस बात का भी तो ध्यान रखें ना कि हमें ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। बहनों, यदि गुर्दे में पथरी हो तो हमें भोजन के ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, यानी नमक का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। इसके अलावा बहनों, उच्च ऑक्सलेट वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खाने से भी बचना चाहिए, जैसे कि किशमिश है, डिब्बा बंद फलों का सेवन है, या डिब्बा बंद जो सलाद हैं उसका सेवन, पालक, भिंडी, शकरकंद, बादाम, काजू, इन सब का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा बहनों, यदि किडनी में स्टोन है तो चिप्स, पापड़, डिब्बा बंद सूप और नमकीन स्नैक्स से भी हमें बचना चाहिए। इसके अलावा चिकन, मछली और अंडे का भी अधिक सेवन यूरिक एसिड को बढ़ाता है, जो कि पथरी का कारण बनता है, इसलिए इनका सेवन भी हम ना करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। बहनों, जो बीज वाली चीज़ें हैं, जैसे कि टमाटर है, बैंगन है और अमरूद है, इनका सेवन तो हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इनका सेवन करते हैं तो हमें बीज पहले निकाल देने चाहिए, उसके बाद ही इसका सेवन करें। इसके अलावा मीठे पेय पदार्थ हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, पैक्ड जूस है और ज़्यादा चीनी वाली मिठाइयाँ, इनसे भी हमें परहेज़ करना चाहिए। बहनों, किडनी स्टोन से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें तेज काली चाय भी नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा बहनों, यदि गुर्दे की पथरी को आप रोकना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि हम संतुलित आहार लें, और यदि पथरी हो जाती है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए, और हमेशा घरेलू उपचार ना करें। घरेलू उपचार के साथ साथ डॉक्टर से परामर्श करें और उसके बाद ही आप किसी भी पदार्थ का सेवन करें या फिर किसी भी पदार्थ को छोड़ें। और अब प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, गर्मी का मौसम है और ऐसी गर्मी में हम अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें और चमकदार बनाए रखें, ये बेहद ज़रूरी है। इसके लिए हमें हल्का स्किन केयर रूटीन अपनाना ही होगा। बहनों, गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है और हवा चलती है, धूल मिट्टी उड़ती है, तो ऐसे में पसीने और गंदगी को हटाने के लिए हमें जेल बेस्ड क्लिंजर से चेहरा धोना चाहिए और इसके अलावा टोनर का इस्तेमाल भी करना चाहिए और साथ ही साथ हल्का मॉइस्चराइज़र भी अपने स्किन पर लगाना चाहिए। और जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हम पहले सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। गर्मी का मौसम होता है तो पसीना धूल बहुत अधिक होती है, इसलिए जैसे ही हम घर से बाहर निकलें तो चेहरे को साफ जरूर करें। इसके अलावा टोनर के लिए आप गुलाब जल या फिर ककड़ी के अर्क वाले टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहनों, यदि हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खुले रोम छिद्रों को कसने में मदद करते हैं और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन बेहद ज़रूरी है, इसको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और तेज़ धूप होती है तो सनबर्न और टैनिंग से बचने के लिए सनस्क्रीन को घर से निकलने से लगभग 20 मिनट पहले लगा लेना चाहिए। और बहनों, ज़रूरी तो ये है कि हम तेज़ धूप में निकलने से ही बचें, यदि बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और संभव हो तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर के अंदर ही रहें, या फिर निकलना हो तो छाया में ही रहने का प्रयास करें, यानी आप छाते का इस्तेमाल करें, चेहरे को स्कार्फ से ढक लें और गॉगल्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ और ध्यान भी हमें देना ही चाहिए, जैसे कि अपने कपड़ों पर भी हम ध्यान दें। गर्मी के मौसम में हम हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और बहुत

टाइट कपड़े ना पहनाएं। इसके अलावा स्किन के साथ साथ हमें अपने होठों पर और अपनी आँखों का भी ख्याल रखना चाहिए। होठों के लिए हमें SPF युक्त लिप बाम का इस्तेमाल करना चाहिए और आँखों की सुरक्षा के लिए हम चौड़ी किनारे वाली टोपी पहनें और धूप का चश्मा पहनें। इसके अलावा दिन में 2 बार चेहरा ज़रूर धोएं और रात को सोने से पहले चेहरा साफ करके ही सोएं, तभी हम इस गर्मी के मौसम में अपनी त्वचा को चमकदार बनाए रख सकते हैं। और अब कार्यक्रम का प्यारा सा गीत।

बहनों, एक बार हम ये सोचकर देखें कि इस गर्मी के मौसम में हमें किसी प्रोग्राम में जाना है और हम अच्छी तरह से तैयार हैं और फिर पसीना आ जाता है और पसीने में बहकर हमारा सारा मेकअप खराब हो जाता है, तो हमारा पूरा लुक बिगड़ जाता है और ऐसे में हमारा मूड बिगड़ना स्वाभाविक ही है। तो बहनों, गर्मी के मौसम में मेकअप करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। गर्मियों में अगर सही तरीके से मेकअप न किया जाए तो पसीना हमारे लुक को ख़राब कर सकता है। ऐसे में मेकअप करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है ताकि हमारा लुक खराब ना हो और हम खूबसूरत दिखें। गर्मी के मौसम में हमें लाइट और मैट फिनिश प्रोडक्ट्स चुनने चाहिए। भारी फाउंडेशन की जगह बीबी या सीसी क्रीम का उपयोग करना चाहिए और वाटरप्रूफ आई मेकअप जैसे कि काजल है, मस्कारा है, इन सब का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जो कि वाटरप्रूफ हो। इसके अलावा बहनों, पूरे दिन में अपने फ्रेश लुक के लिए हम अपने पास ब्लॉटिंग पेपर जरूर रखें और इसका इस्तेमाल हम तब करें जब हमारी त्वचा पर पसीना आता है। अब ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करते समय हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हमें इसे त्वचा पर रगड़ना नहीं है, बल्कि इस ब्लॉटिंग पेपर को हल्का हल्का टच करना है। बस टच करने से ही पसीना सूख जाएगा। बहनों, गर्मी का जो मौसम है, इस मौसम में मेकअप करने से पहले हम अपनी त्वचा को तैयार कर लें। इसके लिए हम ठंडे पानी से चेहरा धोएं और यदि हम चाहें तो मेकअप करने से पहले आइस क्यूब से भी चेहरे को तैयार कर सकते हैं, यानी आइस क्यूब से चेहरे की मसाज कर सकते हैं। और आपके चेहरे के जिन जिन हिस्सों पर पसीना अधिक आता है वहाँ पर पाउडर ज़रूर लगाएं। जो पाउडर है वो अतिरिक्त तेल को सोख लेता है, यानी आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपको मेकअप करने से पहले पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। बहनों, आप जिस मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं वो आपके प्रोडक्ट्स वाटरप्रूफ होने चाहिए और वाटरप्रूफ मेकअप होने के बाद आपको सेटिंग स्प्रे का भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जिससे कि आपका लुक खूबसूरत दिखता रहे। इसके अलावा मौसम तो गर्मी का है ही और इस मौसम में हम प्राइमर को तो स्किप कर ही नहीं सकते हैं। और एक जो अच्छा जो प्राइमर है वो ऑयल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहनों

जो प्राइमर है वो गर्मी के मौसम में हमारे मेकअप पर और हमारी त्वचा के बीच में एक ढाल का काम करता है और त्वचा पर पसीना नहीं आने देता है और हमारा मेकअप बिगड़ता भी नहीं है। बहनों, गर्मी के मौसम में हमें ग्लासी लिपस्टिक की जगह मैट लिपस्टिक को चुनना चाहिए, और जो ये मैट लिपस्टिक होती है ये लंबे समय तक टिकी रहती है और ये फैलती भी नहीं है। और बहनों, इस बात का तो हम ध्यान रखें कि यदि हम सही तरीके से मेकअप करते हैं तो हमारा जो लुक है बेहद अच्छा लगता है और हम सबको अच्छे भी लगते हैं। और बहनों, एक बात और भी है कि मेकअप तो हमें अच्छा करना ही चाहिए, अपने मेकअप पर ध्यान भी देना चाहिए। कुछ जो घरेलू नुस्खे हैं यदि हम उनको अपनाते हैं तो हम हमेशा ही खूबसूरत दिख सकते हैं, और यदि मौसम जो भी हो, लेकिन यदि मौसम गर्मी का है तो हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, और मौसम गर्मी का है तो ध्यान रहे हमें हल्का मेकअप चुनना चाहिए, और गर्मी के मौसम में कुछ घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए जिससे कि हमारी त्वचा चमकदार बनी रहे। जैसे कि एलोवेरा जेल है, टमाटर और पपीते का गूदा है, या फिर चंदन पाउडर, बेसन और हल्दी का उबटन हम लगातार लगाते रहें तो हमारी त्वचा चमकदार बनी रहती है और जो हमारी त्वचा है या हमारा चेहरा है चांद सा सुंदर हो जाता है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, खाना बनाने वाली हर माँ और पत्नी का अपने परिवार के सदस्यों से एक ही प्रश्न हर रोज़ होता है

0: करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
2: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
3: बहनों, खाना बनाने वाली हर माँ और पत्नी का अपने परिवार के सदस्यों से एक ही प्रश्न हर रोज़ होता है, कल खाने में क्या बनाएं। अब इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खाना बनाने वाली हर गृहिणी कितने तनाव में रहती है, और दूसरी तरफ परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी पसंद का खाना चाहते हैं, और एक महिला के लिए रोज़ रोज़ यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो खाने में ऐसा क्या बनाए कि परिवार के हर सदस्य की इच्छा पूरी हो जाए। ऐसे में बहुत समस्या आ जाती है एक महिला के सामने कि वो खाने में ऐसा क्या बनाए कि परिवार का हर सदस्य खुश हो जाए। और फिर बहनों, ये बात बहुत स्वाभाविक भी है कि हम रोज़ रोज़ एक ही काम करते हैं तो हम बोर भी हो जाते हैं। अब ऐसे में एक आसान तरीका ये है कि घर का जो भी काम है, यानी खाना बनाने का जो काम है, उस काम में कभी कभी पुरुष भी अपना हाथ आजमाएं, यानी कभी कभार महिलाओं को किचन से फुर्सत मिल जानी चाहिए। इससे होगा ये कि महिलाओं को फुर्सत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ खाने का स्वाद भी बिल्कुल बदल जाएगा। और क्या बनाएं, ये समस्या एक दिन के लिए महिलाओं के साथ कम हो जाएगी। और बहनों, यदि हम आज के समय को देखें तो जो घर पर खाना बनाना या दावत देना, ये चलन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इसके अलावा जो बाहर से खाना ऑर्डर करना, ये चलन आजकल चल पड़ा है। और यदि ये होता है तो भी महिलाओं को क्या बनाएं, इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। और यदि कहीं से शादी समारोह का इनविटेशन या फिर किसी पार्टी का इनविटेशन आ जाता है तो सबसे अधिक खुशी होती है घर की महिला को, क्योंकि उसे लगता है कि आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। खाना बनाना समस्या नहीं है बहनों, समस्या तो ये है कि ऐसा क्या बनाएं कि जो सबको अच्छा लगे। तो यदि ऐसे में कहीं से इनविटेशन आता है तो हमें बेहद अच्छा लगता है कि चलो आज क्या बनाएं, ये प्रश्न हमें सबसे नहीं पूछना होगा। तो बहनों, इसके अलावा हमें कभी कभार खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे स्वाद बिल्कुल बदल जाता है और फिर अगले दिन मन करता है कि घर का बना ही कुछ खाया जाए। और पुरुष घर की रसोई में अपना हाथ आजमा लें और अपनी कला का प्रदर्शन भी करें। इसके अलावा बहनों, बाहर से खाना ऑर्डर करें, इसके साथ साथ कभी कभार हमें अपने घर पर किसी पेशेवर कुक को बुला लेना चाहिए, जिससे कि खाने का स्वाद बदल जाएगा और सबको खाना अच्छा लगेगा। अब क्या बनाएं, इस समस्या से बचने के लिए बहनों हमें खुद भी कुछ प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। हमेशा हम कुक पर निर्भर नहीं रह सकते, किसी इनविटेशन पर भी निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में बहनों, इस समस्या से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा रोटी पर निर्भर ना रहें। कभी कभार कुछ हल्का और पारंपरिक खाना बना लें, जैसे कि दलिया है, खिचड़ी है, इडली, पोहा, चीला, जो भी आपको अच्छा लगता है कुछ ऐसा कभी कभार बना लेना चाहिए। और कभी कभी बहनों, झटपट बनने वाली सब्जी है, जैसे कि आलू की सब्जी है, ये भी बनानी चाहिए। जैसे आलू जीरा है, बहुत आसानी से बनता है, बहुत जल्दी बनता है और कभी कभी ये खाने में बेहद अच्छा भी लगता है। इसके अलावा आप ढोकला है, दाल बाटी चूरमा, कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। और बहनों, कॉम्बिनेशन का तो हम ध्यान रखें तो खाने का स्वाद बढ़ ही जाता है। जैसे कि पालक का पराठा है, इसके साथ हम आलू की सब्जी बना लें, और मेथी मटर जो मलाई की सब्जी है, इसको बनाएं तो हमें रेस्टोरेंट वाला स्वाद घर पर भी मिल जाता है। तो बहनों, खाने में कुछ अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, हाँ वही बनाएं, लेकिन कुछ नया ट्राई करते रहें, कुछ अपने कलात्मकता का प्रदर्शन करें। कभी हम टेबल को बहुत अच्छे से सजा दें, तो कभी कभी हमने जो भी बनाया है बहुत अच्छे तरीके से परोस दें तो खाने वाले को खाने का मज़ा आ जाता है। और अब हम मज़ा लेते हैं प्यारे से गीत का।

0: BCCI has also included young sensation Vaibhav Suryavanshi in the squad for the first time, following his great IPL 2026 season scoring highest runs. Prince Yadav has also been added to the squad. The team was announced after a meeting of Team India's Men's Selection Committee, led by Chief Selector Ajit Agarkar and BCCI Secretary Devajit Sekhia, for deciding the squad for the tours of Ireland and England and the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka multi-day games at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilkar Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20 I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे

0: आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है।

0: श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20

0: श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। अब श्रोता सुने फिल्म संगीत।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था तलाश। आइए अब सुनते हैं एक और मधुर सा ये नगमा, जैकपॉट। ये है फिल्म का नाम। आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने।

आइए अब सुनते हैं बॉडीगार्ड, इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और सुरैया घोषाल की।

ये कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है लुटेरा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स। इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमें सुन सकते हैं। दिन के 3 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारी उर्दू सर्विस के कार्यक्रम।

3:30 पर हिमाचली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे और शाम 4 बजे फिल्मी नगमों का सफर शुरू होगा।

7.7% की शरह से बढ़ने का अंदाजा लगाया गया है। शुमारियात और प्रोग्राम के निफास की वजारत ने साल 2025-26 के माली साल के लिए सालाना जीडीपी का आर्जी तखमीना इस साल जनवरी से मार्च तक का सहमाही तखमीना जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बुनियादी सेक्टर में 2.2% की शरह नमू का मुशाहिदा किया गया है, जो कि खास तौर से ज़रई और माही परवरी की कारकर्दगी की वजह से है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर कनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा, ताकि दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान राबतों, तवानाई, सरमायाकारी और तजारत समेत दीगर अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाया जा सके। जनाब शिशिर कनाल इन दिनों भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपनी हफ्तेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बातचीत के लिए भारत के पास तिजारत, सरमायाकारी, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों, तआवुन और तरक्यात समेत एक तवील एजेंडा है। इस दौरान नेपाल के वजीर खारजा खनाल ने कल नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत में नेपाल के सफारतखाने के मुताबिक दोनों ने भारत और नेपाल के बाहमी रिश्तों को एक ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम करने की गरज से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने स्लोवेनिया के नए मुकर्रर करदा वजीर खारजा टोने काजर को आज मुबारकबाद दी है और उनके साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। टोने काजर एक साबिक सिफारतकार हैं जिन्हें 30 साल का तजुर्बा है। उन्हें स्लोवेनिया में वजीर आजम जानेस जानसना की क्यादत में दाएं महास की नई मखलूत हुकूमत के तहत बाजाबता तौर पर हलफ दिलाया गया है। अक़वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने भारत के क़याम फ़ौज की मेजर अभिलाषा बारक को 2025 के पुरवक़ार अक़वामे मुत्तहदा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सरफराज किया है। मेजर बारक लबनान में अक़वामे मुत्तहदा की अबूरी फ़ोर्स में भारत की बटालियन में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। मेजर अभिलाषा बारक को अक़वामे मुत्तहदा क़याम फ़ौज के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर एक तकरीब में ये अवार्ड अता किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर और जबरन कब्जे के में लिए गए भारत के इलाकों में नाम निहाद गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने के पड़ोसी मुल्क के मंसूबों पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है। वहाँ कल ये इंतखाबात होना है। भारत ने अपना ये जाना माना मौकफ दोहराया है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, वो भारत का अटूट हिस्सा है और उसे अलग नहीं किया जा सकता, जो 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत के साथ मुकम्मल और कानूनी और नाकाबले तस्खीरुल खाक का नतीजा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाकर अक़वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में अपनी रुकनियत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान की बार बार की रट लगाने और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा था, है और रहेगा, जिसे भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। जनाब पी हरीश जनरल असेंबली में पेश की गई कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब व्लादिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बराह रास्त बातचीत की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्हें फिलहाल ऐसी किसी मीटिंग का कोई फायदा नजर नहीं आता। पुतिन ने यह तबसरा गुज़श्ता रोज सेनेट सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के अहम इक्तसादी फोरम की दौरान किया, जो ज़ेलेंस्की के उस खुले खत के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने बिलमुशाफा मुलाकात की अपील की थी, ताकि दोनों

0: वो तो
1: क्यूट है ना।
0: अरे पहलवान है
1: पर तुमसे प्यार करती है।
0: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
0: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
0: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।

मुसामिन इसी नगमे के साथ मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लीसा मीना पेश है हिमाचली लोकगीत।

समीन, आप हिमाचली लोकगीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। ली समीन अब पेश है फिल्मी नगमे। तमाम समीन की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब।

जमीन कभी कभी फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। आइए अब यादों की बारात फिल्म का ये दो गाना लता मंग आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

शमीन, मेरा नाम जोकर, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आइए अब किशोर कुमार को सुनते हैं। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये दुगाना सामीन आप सुन रहे थे, फिल्म थी सरगम। आइए अब कुर्बानी फिल्म का ये दुगाना, आवाजें हैं कंचन और अमित कुमार की।

समीन सीआईडी 909। इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। आइए अब आशा फिल्म का नाम लता मंगेशकर का गाया हुआ।

0: इसी नगमे के साथ फिल्मी नगमों का ये सफर अब यहीं खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। 4:50 हो जाते हैं सामीन, अब नशर खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें देने की तारीख कल तक बढ़ा दी है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय T20 बैन अल-अक्वामी क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। पहली बार वैभव सूर्यवंशी को भारत की क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। अब खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के जाब्तों को सही बनाया है। नए सिरे से तैयार किए गए तरीक़ेकार के तहत आमतौर पर FPI सरमायाकारी करने वालों को ज्यादा सहूलत होगी, क्योंकि सरमायाकारी से मुतालिक बाज पाबंदियों को हटा लिया गया है। RBI ने मौजूदा जनरल और तवील मुद्दती सरमायाकारी से मुतालिक जुमरों को सरकारी तमस्सुकात और रियासती तमस्सुकात के लिए एक वाहिद हद के तौर पर भी जम कर दिया है। इस नजरसानी शुदा तरीक़ेकार का मकसद सरमायाकारी को आसान बनाने के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए लाजमी शराइत में कमी करना है। नजरसानी शुदा हिदायात का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान फरीकैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, ताकि दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान राबतों, तवानाई, सरमायाकारी और तिजारत समेत दीगर अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाया जा सके। जनाब शिशिर खनाल इन दिनों भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बातचीत के लिए भारत के पास तिजारत, सरमायाकारी, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों, तआवुन और तरक्या समेत एक तवील एजेंडा है। इसी दौरान नेपाल के वजीर खारजा खनाल ने कल नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत में नेपाल के सफारतखाने के मुताबिक दोनों ने भारत और नेपाल के बाहमी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम करने की गर्ज से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने स्लोवेनिया के नए मुकर्रर करदा वजीर खारजा टोन काइजर को आज मुबारकबाद दी है और उनके साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। टोन काइजर एक साबिक सिफारतकार हैं जिन्हें 30 साल का तजुर्बा है। उन्हें स्लोवेनिया में वजीर आजम जेनेस जनासा की क्यादत में दाएं महाज की नए मखलूक हुकूमत के तहत बाजाब्ता तौर पर

लफ्त दिलाया गया। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरात की तस्दीक और जवाबी पर्चों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी करके इसे 7 जून तक कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई एक पोस्ट में बोर्ड ने कहा है कि तलबा अब इतवार की रात तक अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। CBSE ने उसने कहा है कि तलबा के मफादात की खातिर ये फैसला किया गया है ताकि दरख्वास्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त फराहम किया जा सके। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 6 जून थी। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने आइंदा राज्यसभा चुनाव के लिए लिग्मानेनी रमेश को पार्टी उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से एक सरकारी बयान में यह ऐलान किया गया। लिग्मानेनी रमेश आज अपने नामजदगी के कागजात दाखिल करने वाले हैं। पार्टी के मुताबिक रमेश 2015 से जनसेना पार्टी और उसकी कयादत से वाबस्ता रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी

सीबीएसई ने। उसने कहा है कि तलबा के मफादात की खातिर ये फैसला किया गया है ताकि दरख्वास्त के अमल को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मजीद वक्त फराहम किया जा सके। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 6 जून थी। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने आइंदा राज्यसभा चुनाव के लिए लिग्मानेनी रमेश को पार्टी उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से एक सरकारी बयान में यह ऐलान किया गया। लिग्मानेनी रमेश आज अपने नामजदगी के कागजात दाखिल करने वाले हैं। पार्टी के मुताबिक रमेश 2015 से जनसेना पार्टी और उसकी कयादत से वाबस्ता रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के बहुत से मुल्कों को इक्तसादी गैर यकीनी का सामना है, भारत एक सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बड़ी मईशत की हैसियत से आगे बढ़ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने 2025-26 के माली साल के दौरान अंदरूनी मुल्क 7.7% शरह तरक्की का जिक्र करते हुए ये बात कही। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी के एक ट्रक से टकराने के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए और 22 दीगर जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासरीन, जिनका ताल्लुक एक ही कुनबे से था, वो अपने एक रिश्तेदार की अस्थियां ब्यास नदी में बहाने के लिए वहां जा रहे थे। बहुत से अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए फिरोजपुर सिविल अस्पताल और फरीदकोट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। पुलिस जराये ने आकाशवाणी को बताया कि 22 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाकर अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में अपनी रुकनियत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान के बार बार इसकी रट लगाने और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा था, है और रहेगा, जिसे भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। जनाब पिहरिश जनरल असेंबली में पेश की गई काउंसिल के सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर और जबरन कब्जे में लिए गए भारत के इलाकों में नाम निहाद गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव करा के पड़ोसी मुल्क के मंसूबों पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है। वहां कल ये इंतखाबात होना है। भारत ने अपना ये जाना माना मौकिफ दोहराया है कि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, वो भारत का अटूट अंग है और उसे अलग नहीं किया जा सकता। जो 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत के साथ मुकम्मल कानूनी और नाकाबिल तंसीख इलहाक का नतीजा है। ईरान के आला रहनुमा मुस्तफा खामनेई के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो आजादाना तौर पर फैसले करें, आबनाए हुरमुज की नाकाबंदी खत्म करें और ईरान के असासों पर आयद पाबंदी भी खत्म करें। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। जनाब रजाई ने कहा कि फरीकैन के दरमियान बातचीत तातुल का शिकार है और जनाब ट्रंप को इस तातुल को दूर करना चाहिए। ईरान के आला रहनुमा के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने यह भी कहा कि अगर अमरीका ईरान के साथ किसी भी मुआहदे पर पहुंचना चाहता है तो उसे ईरान के असासे जारी कर देने चाहिए और अमरीका को इस आजमाइश पर पूरा उतरना चाहिए, जिसके बाद रास्ता खुल जाएगा। मॉरिशस ने उन गैर मुल्की शहरियों पर आरजी तौर पर सफरी पाबंदी नाफिज कर दी है जिन्हें गुज़श्ता 21 रोज के दौरान कांगो, युगांडा या जुनूबी सूडान का सफर किया है, वहां से होकर गुजरे हैं या वहां कयाम किया है। ऐसा इबोला वायरस के हालिया मामलात के सिलसिले में किया गया है। मॉरिशस के शहरियों और गैर मुल्कियों को जिनके पास काम करने, रिहाइश, कारोबार या तालिब इल्म की हैसियत से तस्दीक शुदा इजाजत नामा है, उन्हें मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अगर पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने इनमें से किसी भी मुल्क का दौरा किया है तो उन्हें लाजमी तौर पर 21 दिन तक क्वारंटीना में रहना होगा। शतरंज की ग्रैंड मास्टर आर प्रगनानंदा ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने

0: में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विसेंट काइमर आखिरी मरहले में हरा कर यह जीत हासिल की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ क्रिकेट मैचों के लिए 16 रुकनी टी20 टीम का ऐलान किया है। श्रेयस अय्यर को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम का 5 बजे जाता है। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की आज की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। रात 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, हम संध्याकालीन सभा के कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। कार्यक्रम युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी अब आप सुनेंगे आकाशवाणी से।

शिववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम युवाणी के साथ। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत और आपको सुनाएंगे गीतों के साथ कुछ विषयों पर चर्चा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की बात से। श्रोताओं, शिक्षा इट मीन्स ज्ञान का प्रसार। यह वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने विषय में जानकारी प्राप्त करता है, बल्कि उसे समझकर समाज के विकास में योगदान देने की योग्य बनता है। दोस्तों, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। यह न केवल व्यक्ति के मानसिक बौद्धिक विकास को बढ़ाती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, मूल्य और कौशल प्राप्त करता है, जो हर इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट और समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। दोस्तों, शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं। शिक्षा न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करती है, बल्कि जीवन में हमारी लाइफ के हर निर्णय लेने, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने की क्षमता भी हमारे अंदर विकसित करती है। इस विषय को लेकर स्कूलों में भी टास्क दिए जाते हैं राइटिंग्स लिखने के लिए, और छात्रों के मन में सवाल रहता है कि हम क्या लिखें, कहाँ से इसकी शुरुआत करें। दोस्तों, शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। हर देश में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जो व्यक्ति उसके व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है, बल्कि व्यक्ति के सोचने, समझने, इंटेलेक्चुअल मेंटलिटी को डेवलप करने का एक माध्यम विकसित करती है। दोस्तों, राष्ट्र के विकास के संदर्भ में भी शिक्षा की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक शिक्षित समाज ही नए विचारों, नवाचारों, टेक्नोलॉजी

टेक्नोलॉजी विकास को प्रोत्साहन देता है जो किसी भी देश की प्रगति के लिए जरूरी है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग भले ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों शिक्षित होना जरूरी है। उसी के बलबूते ही हम टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। एक शिक्षित समाज से ही नए विचारों, नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। यही कारण है कि हर देश में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयास किए जाते हैं। दोस्तों, लर्निंग केवल व्यक्ति उन्नति का साधन नहीं, बल्कि समाज और देश की प्रगति का आधार भी है। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, वह अपने समाज, अपने देश के भविष्य को बेहतर बना सके। तो लीजिए, इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे शिक्षा के बारे में। लीजिए उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और कुछ चर्चा और कर लेते हैं उस विषय पर। श्रोताओं, जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही डिसीजन लेने में सक्षम होता है व्यक्ति जो शिक्षित होता है। शिक्षित व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी, जिसके कारण वह अपने लक्ष्यों को इजीली प्राप्त करने में सफल होता है। साथ ही साथ मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है शिक्षा। इसके साथ ही दोस्तों, शिक्षा व्यक्ति के भीतर डिसिप्लिन, नैतिकता, टाइम मैनेजमेंट जैसे गुणों का विकास भी करती है, जो हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। और समाज के विकास में शिक्षा के महत्व को देखें तो दोस्तों, समाज को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी साधन है शिक्षा। यह व्यक्ति को समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाती है। एक शिक्षित समाज अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच और भेदभाव से मुक्त होता है। दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व क्या होता है, इनका पालन करता है। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास के लिए नवाचार, वैज्ञानिक सोच को भी प्रोत्साहन देता है, जिससे समाज में प्रगति और सुधार होते हैं। असमानता की कमी से समाज, गरीबी, अपराध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, जबकि शिक्षित समाज इन समस्याओं को समाप्त करने में सक्षम होता है। दोस्तों, पुस्तकें भी हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है, हम उनसे भी शिक्षा

बेहतर प्राप्त करके अपने अंदर ज्ञान को हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं। अच्छी पुस्तकें हमें कड़ी मेहनत करने और कठिन समय के दौरान साहसी बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। श्रोताओं, किताब एक नक्शे की तरह होती है जो आदमी के जीवन के साथ साथ प्रकृति के जीवन को भी दर्शाती है। क्योंकि कभी आपने देखा है कि एक ही किताब में अलग अलग जगह की कहानियों के माध्यम से, कविता, थॉट्स के माध्यम से दर्शाया गया हो। राइटर अपने लेखन के माध्यम से अपने व्यक्तिगत, अपने व्यावसायिक विकास या फिर सामाजिक अलग अलग भाषाओं से जुड़ी चीज़ों को एक ही बुक के अंदर समेट देता है। दोस्तों, एक अच्छी किताब का एक एक पन्ना मनुष्य द्वारा प्रतिपादित सर्वोत्तम और अच्छे विचारों के भंडार की तरह होता है। अगर आपने कभी किताबें पढ़ने का शौक नहीं रखा है तो अब से इसकी आदत की शुरुआत कीजिए और अच्छे के लिए बदलाव का अनुभव कीजिए। दोस्तों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, हम सभी मानते हैं। मोबाइल फ़ोन हमारा बहुत अच्छा साथी बन चुका है, लेकिन एक बुक भी बहुत अच्छी साथी बन सकती है अगर हम उसे अपना अच्छा साथी बनाए तो। राष्ट्र के विकास में भी शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति उसके नागरिकों की शिक्षा के स्तर पर ही डिपेंड करती है। शिक्षा के माध्यम से देश को कुशल मानव संसाधन मिलता है जो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देता है। कोई भी देश टेक्नोलॉजी हो, साइंस का क्षेत्र हो या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति नहीं कर सकता। बिना शिक्षा के हम कोई भी रोजगार स्थापित नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ी बहुत शिक्षा तो ज़रूरी है। इसके अलावा शिक्षित नागरिक अपनी सरकार और नीतियों को भी बेहतर ढंग से समझते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। दोस्तों, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक भी सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम बात कर रहे थे दोस्तों शिक्षा के महत्व के बारे में। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने समाज को उन्नत बना सकते हैं, एक सशक्त राष्ट्र की नींव रख सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वह अपने समाज के बेहतर भविष्य को बना सके। शिक्षा दोस्तों केवल ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि एक माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज के, राष्ट्र के विकास को प्रगतिशील विकासशीलता की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, बातें तो हम और भी करेंगे, लेकिन आपको सुनाते हैं उससे पहले कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म ओम शांति ओम से ये फिल्मी गीत। लीजिए अब चर्चा करते हैं कुछ और नए विषय पर। दोस्तों, अभी हम जानेंगे उस्ताद योजना के बारे में। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों की पारंपरिक शिल्प कलाओं और शिल्पों की विरासत को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन विकास योजना का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों को प्रशिक्षित करना और कौशल को उन्नत करना है, जिससे उनके द्वारा अपनाई जाने वाली पारंपरिक पैतृक कलाओं और शिल्प कलाओं का संरक्षण हो सके। हम सभी चाहते हैं कि हमारी धरोहर हमेशा के लिए सहेज कर रखें। उसी तरह दोस्तों, उस्ताद योजना को शिल्प कलाओं के लिए संरक्षित किया जा सके, इसलिए चलाई गई। लीजिए जान लेते हैं इसके प्रमुख उद्देश्यों को। युवाओं को प्रशिक्षण देकर कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण करना। इसी के साथ दोस्तों, चिन्हित शिल्प कलाओं और उनके दस्तावेजीकरण के लिए मानक स्थापित करना, साथ ही पारंपरिक कौशलों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए। कुछ और उद्देश्य हैं दोस्तों, जिनको हम जानेंगे। श्रमिकों को स्कूल छोड़ने वाले छात्रों आदि की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए। और इनके उद्देश्य है अल्पसंख्यकों को वैश्विक बाजार में अवसर प्राप्त करने में उनकी हेल्प करना। हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर आजीविका सृजित करना। और साथ ही दोस्तों, श्रम की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को चलाया गया। परंपरागत कला और शिल्प में डिजाइन और अनुसंधान को विकसित करना, प्रदर्शनियों के माध्यम से पाक कला सहित पारंपरिक शिल्प और कला कौशल को प्रदर्शित करना, और साथ ही व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना, जो लुप्त हो रही हमारी कलाएं हैं और शिल्प कलाएं हैं उनको संरक्षित रखने के लिए प्रतिभावान

कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मानित करना। दोस्तों, उस्ताद योजना का उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकलों की कौशल को उन्नत करना है। प्रशिक्षित कारीगर अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को विभिन्न विशिष्ट पारंपरिक कलाओं और शिल्पों में प्रशिक्षित करेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय उस्ताद योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा प्रचलित सभी महत्वपूर्ण पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करता है। इसमें कार्यक्रमों में शामिल हैं संस्थानों के माध्यम से पारंपरिक कलाओं या शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उस्ताद योजना के बारे में। आवेदकों की पात्रता को जान लेते हैं। आवेदकों का अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना अनिवार्य है। आवेदकों को मान्यता प्राप्त संस्थान से चमड़ा डिजाइन, वस्त्र डिजाइन, कालीन डिजाइन या इसी तरह के क्षेत्रों में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। साथ ही साथ आवेदकों को एमफिल या पीएचडी के लिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए। आवेदकों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार सीटों में से 33% सीटें अल्पसंख्यक लड़कियों या महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लीजिए, हमने जाना उस्ताद योजना को। दोस्तों, बातें तो यूं ही आगे भी चलेगी। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित। मेगावाट 918 किलो हर्ट्स, DRM 909 किलो हर्ट्स, FM 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

दोस्तों, वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है। पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन को सुगम और स्वस्थ भी बनाते हैं। आज के समय में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के कारण वृक्षारोपण का महत्व दोस्तों और भी बढ़ गया है। पेड़ लगाना पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं, मिट्टी को कटाव से बचाते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इन सभी से आप भली भांति परिचित ही है। लेकिन दोस्तों, हमारे द्वारा किया गया एक प्रयास हमारी पृथ्वी को बचा सकता है, तो क्यों ना यह अच्छा प्रयास किया जाए और धरती पर रहने वाले एक एक व्यक्ति द्वारा एक एक पेड़ लगाकर इस धरती को हरा भरा क्यों ना किया जाए। पेड़ पक्षियों, जीव जंतुओं के लिए आवास प्रदान करते हैं। वृक्षारोपण से दोस्तों न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है, बल्कि यह हमें छाया, फल और लकड़ी सभी संसाधन भी प्रदान करते हैं। वृक्षारोपण के लिए हमें जागरूक होना चाहिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस, समाज में वृक्षारोपण के ज़्यादा से ज़्यादा अभियान चलाकर पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा हम सब बना सकते हैं। ज़रूरत है रहने वाले धरती पर एक एक प्राणी की अच्छी सोच की, कि हमारे द्वारा लगाया गया एक पेड़ इस पूरी प्रकृति को हरा भरा कर सकता है। हमें चाहिए कि हम पेड़ों की कटाई को रोक के नए पेड़ लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। वृक्षारोपण हमारे जीवन के लिए अत्यंत ज़रूरी है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण में हम अपना योगदान दे सके। इससे हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और खुशहाल भी रहेगा। दोस्तों, पेड़ हमें स्वच्छ हवा देते हैं, लकड़ी, फल, ईंधन और रहने के लिए स्थान जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदान करते हैं। वे हमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ अच्छी केयर,

और पानी डाल सके, उनका हम पोषण अच्छे से कर सके। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। इनका औषधीय और आध्यात्मिक महत्व भी है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में हम पर्यावरण को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में प्रकृति और हमारे बीच असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। दोस्तों, भविष्य के इस संकट को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि वर्तमान में अधिक से अधिक पेड़ हम लगाएं। वृक्षारोपण से मिट्टी का कटाव कम होता है, भूजल स्तर बनाए रखने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, पेड़ों का हमारे जीवन में होना बेहद ज़रूरी है, जो हमें हमारी ज़रूरतों की अनगिनत सुविधाएं प्रदान करते हैं। पर्यावरण को संतुलित और समृद्ध बनाना भी दोस्तों ज़रूरी है ना। इसके लिए न केवल हरियाली बढ़ती है, बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षित किया जा सकता है। वृक्षारोपण से न केवल पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है, बल्कि वन आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था समर्थन देते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार भी सृजित होते हैं। आज के समय में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी है दोस्तों। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है वृक्षारोपण करना। पृथ्वी पर वास करने वाले हर एक जीव के साथ बेहतर और सम्मानजनक समन्वय बनाया जा सकता है। दोस्तों, वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, गर्मी में छाया देते हैं, फल फूल जड़ी बूटियाँ सभी चीज़ें हमारी ज़रूरतों के अनुसार प्रदान करते हैं। वृक्ष की हमारी वायु की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, भूजल संरक्षण में भी सहायता करते हैं। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण से तापमान कम करने और हीट आइसलैंड प्रभाव को घटाने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, वृक्षारोपण को तभी सफल माना जा सकता है जब हम अपने द्वारा लगाए गए पौधे की नियमित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित कर सके। जब आप किसी पेड़ को लगाते हैं, उसे बढ़ते देखते हैं, तो आपको भी महसूस होता है कि आपने बहुत कुछ अच्छा किया है। वृक्षारोपण में केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं, उन्हें विकसित करना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, यह केवल सरकार या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी मिलकर प्रकृति का सम्मान करें और एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करें। लीजिए, इसी विषय को हम यहीं खत्म करते हैं। हम जानेंगे कुछ और नए विषय के बारे में। उससे पहले आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

Gentlemen! Can you feel it? Then let's go for it.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत कहो ना प्यार है फिल्म से। आवाजें थी बाबुल सुप्रिया और उनके साथियों की। लीजिए, अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य विविध वित्तीय सेवाओं के प्रावधान की गारंटी देना है, जिसमें बेसिक सेविंग अकाउंट की उपलब्धता, आवश्यकता के आधार पर लोन, लेन देन सुविधाएं और बीमा, साथ ही पेंशन लाभ शामिल है। यह सुविधाएं दोस्तों कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग को केंद्र में रखकर बनाई गई है। किफायती लागत पर व्यापक पहुंच हासिल करना प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के माध्यम से ही संभव है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ देश के सभी नागरिक उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जनधन योजना कब शुरू की गई थी और इसका प्रयोजन क्या था। इसकी शुरुआत दोस्तों 28 अगस्त 2014 से हुई, जब भारत सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर या पिछड़े वर्ग को केंद्र में रखते हुए इस योजना की घोषणा की। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल, जिसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए एक बैंक खाता खोला जाता है। खाते खोलने के लिए कोई न्यूनतम जमा राशि आवश्यक नहीं है दोस्तों। खाता धारकों को रुपए का डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है। लीजिए जानेंगे कि यह योजना कैसे काम करती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से गरीब और कम आय वाले लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच मिलती है। इससे उन्हें वित्तीय प्रणाली में शामिल होने और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने का अवसर भी मिलता है। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से विभिन्न बैंक सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंचता है और इस योजना के तहत खोले गए अकाउंट्स में खाता धारक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सभी आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। लीजिए जान लेते हैं इसके मुख्य उद्देश्यों को दोस्तों। आर्थिक प्रतिभागिता को बढ़ावा देना। दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना गरीब और कम आय वाले लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत लोगों को वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करके वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में भी मदद मिलती है, साथ ही सरकारी लाभों और योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाना। यह योजना सरकारी लाभों और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाती है। इससे उन्हें आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। यह योजना दोस्तों लोगों को चेकबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे सभी आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में उनकी हेल्प करती है। लीजिए जान लेते हैं इस योजना की प्रमुख विशेषताओं को। दोस्तों, यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। इस योजना के तहत खोले गए खाते में 0 शेष राशि के साथ शुरुआत की जा सकती है। इस योजना के तहत खोले गए खाते में चेकबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सभी आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, इस योजना के तहत खोले गए खाते में खाता धारक दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा जैसी बीमा योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं, हम क्या क्या इससे फायदे ले सकते हैं। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच। दोस्तों, इस योजना के तहत खोले गए खाते में खाता धारक को चेकबुक, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसे

सी बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता है जिससे लोगों को अपने पैसों का प्रबंधन करना और विभिन्न वित्तीय लेनदेन करना इजी हो जाता है। इस योजना के तहत खोले गए खाते में खाता धारक बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता और अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश कर सकता है, जिससे लोगों को अपने पैसे को सुरक्षित रखने में, निवेश करने और बचत करने में उनकी हेल्प मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस योजना के तहत खोले गए खाते में खाता धारक दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा जैसी बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिससे लोगों की दुर्घटना या मृत्यु जैसी घटनाओं में उनको वित्तीय सहायता मिल सके। श्रोता, प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाकर एक गेम चेंजर साबित हो रही है। यह न केवल वित्तीय प्रतिभागिता को बढ़ावा देती है बल्कि लोगों को भी सुरक्षा का एहसास दिलाती है। इस योजना के जरिए सरकार ने देश के विकास में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का एक मजबूत कदम उठाया। साथ ही यदि आप संशय में हैं कि जनधन खाता किस बैंक में खुलता है, तो आप हमेशा इस योजना के बारे में और डिटेल भी जान सकते हैं ऑनलाइन अपडेट के माध्यम से। तो लीजिए, हमने जाना प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्म गीत।

लीजिए दोस्तों, अब जानेंगे आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को। आज ही के दिन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक किया गया दोस्तों, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे। आज ही के दिन यानी 6 जून के दिन ही 1944 में डी-डे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरकर

आज ही के दिन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक किया गया, दोस्तों, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक रहे। आज ही के दिन यानी 6 जून के दिन ही 1944 में डी डे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरकर इतिहास का सबसे बड़ा जल थल आक्रमण शुरू किया था। और साथ ही दोस्तों, आज ही के दिन ईरान गैस पाइपलाइन योजना पर भारत और पाकिस्तान ने सहमति दी 2005 में। ये तो थी आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनाते हैं आज के युवाणी कार्यक्रम का एक आखिरी फिल्मी गीत।

दोस्तों आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है। श्रोतो, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सुनेंगे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की। 7 बजे कार्यक्रम होगा चौपाल। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे कुछ भक्ति गीत एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे।

रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजल। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों का वक्त रहेगा 6:30 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार होंगे। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। सभा के आखिर में रात्रि 11 बजे समाचार होंगे हिंदी में और 11:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:05 होने को हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सिराई की।

कलम दे धनी साईं कुंभन दास, कृष्ण जैकू सांवला, सांवल शाह, बेपरवा, किशन, कान्हा, पता नहीं कितने नावों दे नाल वरिया तू सड़ा वेंदा रही है। उसे कृष्ण दे गुणगान करन आले भक्तां विच थे हन अठ वड्डे कवि, जिन्हां को बाद विच अष्ट छाप दे कवि सड़ा गया। इस अष्ट छाप दे कवियां विच सब तू पहले कवि थे साईं कुंभन दास जी। इन्हों दे बाद साईं सूरदास, साईं कृष्णदास, साईं परमानंद दास, साईं गोविंद स्वामी, साईं छीर स्वामी, साईं नंद दास ते साईं चतुर्भुज दास। ये सिलसिला ये रीत 1448 ईस्वी तो ला के 1530 ईस्वी तक यानी तकरीबन पूरे 100 साल चली। ये शुरुआत साईं कुंभन दास नाल शुरू थी है। साईं कुंभन दास का जन्म मथुरा जिले के गोवर्धन कस्बे के नाल जमुनावतो ना दे एक ग्रां विच खत्री खानदान जैकू गोरवा खत्री आदि हैं 1448 ईस्वी चेत्र महीने की कृष्ण पक्ष की कारसी की डिवार थी है। उन्होंने डाड़के खानदान विच खेतरी का कम ही रोजी रोटी का जरिया है। खेतरी किसानी करना तो सुखी रहना। उन्हों को अपने व्डे वटेर की तरह इो कम रास भी आ गया है। खास तौर पर उन्होंने जमीन पारसोली ग्रां विच पौंदियां हन। किसानी की आमदनी इत्ती ना होंदी है जो अपने घर आले आराम नाल गुजारा कर सकन। कदहीं मीह का ना आवना, कदहीं मीह का ज़्यादा आ वंजना, कदहीं बीज रहावना ते कदहीं जम्मण की किल्लत करके हथ हमेशा तंग रहा है। पर वल भी उन्हां दी खासियत है कि उन्हां अपनी लोड़ पूरी करन कीते किसी के सामने अपना हथ नहीं फैलाया। उन्हां कीते तां कृष्ण साईं दी भक्ति हब कुछ है। भावें टब्बर बहु वड्डा है ते खेती दी आमदनी नाल घर टब्बर को चलावना बहु औखा कम है, पर वह कस वध करके टब्बर दा गुजारा खेती नाल ही करेंदे रहे। उन्हां दे टब्बर जाल दे नाल 7 पुत्र, 7 नूहां ते एक विधवा भतरी जी भी है। साईं कुंभन दास कृष्ण भक्त चंगे ग्रस्त ते वड्डे त्यागी हन। महासंतोषी ते नेक बंदे दी खासियत ये भी है जो कृष्ण भगवान उन्हां दे सामने आप प्रकट थी के सखा भाव आले खेड खेडते हैं। उन्हां दे गुरु दा नाम महाप्रभु वल्लभाचार है। 1493 ईस्वी जडण वल्लभाचार थाई गोवर्धन आए हैं तदा ही कुंभन दास ने उन्हें को अपना गुरु धार दिता है। इस तो 15 वरिया पहलों श्री नाथ जी की मूर्ति प्रकट थी है। हुण गुरु की आग्ञा को सिर मत्ते रख के कुंभन दास श्री नाथ जी की सेवा करन लगे। पुष्टि मार्ग अव्वल तो श्री नाथ जी के मंदिर दे कीर्तनकार का वड्डा अहुदा मिल वंजन ते भी उन्हां अपनी किसानी का कम नहीं छोड़ा ते मरदे दम तक गरीबी अपने टब्बर का पेट उसे नाल भरेंदे रहे। श्री नाथ जी दे मंदिर साईं कुंभन दास जी नित नवे नवे पद गा गा के सुनावण लग पे। श्री नाथ साईं दे श्रृंगार दे पद बनावण ते गावण च कुंभन दास को बहु लज्जत ते चस आंदी आई। एक बार इवें थिया कि उन्होंने राधा कृष्ण युगल लीला दे पद गाए। इन्हां को सुन के गुरु वल्लभाचार जी ने खुश ते निहाल थी के आका तैकू ता निकुंज लीला दे रस दा हेलगी समझे ना। ये गाल सुन के कुंभन दास ने वलदा दिता कि साईं मैकू ता इसे रस की कुराड़ी लोड़ है। ये वह वेला है महाप्रभु वल्लभाचार दे पूरा थी हुण पारों गोसाई विठल नाथ जी की सरप्रस्ती लीला गावन करन लगे। वड्डे वड्डे राजे महाराजे साईं कुंभन दास के दर्शन करन विच अपना भाग समझेंदे हन। वृंदावन के वड्डे वड्डे रसिक संत ते महात्मा भी उन्होंने नाल सत्संग करन दी उम्मीद ला के बैठे रहते हैं। वड्डी गाल ए भी कि साईं ने हर मुश्किल ते पैसे दी थोड़ दे बाद भी अपनी भगवत भक्ति दे नेम ते यश ते कदहीं भी कोई हरफ नहीं आवन दिता। आखा वेंदा एक बार साईं विठल नाथ जी ने कुंभन दास जी को अपने नाल यात्रा इच द्वारका घिन वंजन दी

दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल।

0: पंजवा में बालण आईया बला झूले लालण पंजवा में बालण आईया बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर।
1: बहुत वधिया सूफी संगीत तुसा को सुनवाए असा को हुण इजाजत देवो हुण प्रोग्राम खत्म थीण दा वेला थी गए। मैं ते रुपेश चोपड़ा जी आप सब सुनन वाले कनु इजाजत मंगदे हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल वल मिलसू एंजे ही कोई बे प्रोग्राम दे नाल। राम राम जी।
2: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में

0: संध्या के 6:30 होने को है। लीजिए अब सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और व्यापार सुगमता के लिए भी कई सुधारों पर मंथन किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के देश दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा धन्वंतरी ओपीडी यूनिट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वार्डों के रोगियों से भी बातचीत कर इंतजामों की जानकारी ली। श्री शर्मा ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी और अधिकारियों को मरीजों के लिए जांच सुविधाएं और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस देश का प्रतिष्ठित अस्पताल है, यहां प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जहां भी सुधार की गुंजाइश है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
2: यहाँ दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हों, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो। आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह से आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करें।
1: मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। श्री शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में सुशासन से देश की तस्वीर बदली है।
3: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी

0: विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज अपने पहले दौरे पर जयपुर पहुंचे। संगठन महामंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन के कामों और गतिविधियों की जानकारी ली। वे कल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्ताओं की विशेष बैठक लेंगे। उनका ये प्रवास संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की आज समीक्षा की। उन्होंने विभागों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आज जयपुर में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा तथा नर्सिंग की भर्तियों की विभागवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आज प्रदेश के चार शहरों जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों और नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों के साफ सफाई के कामों को अधिक प्रभावी और जन भागीदारी आधारित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में इन शहरों में स्वच्छता प्रबंधन, कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और जन जागरूकता के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने स्वच्छता व्यवस्था में ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम के नवाचार की सराहना करते हुए साफ सफाई में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए युवा ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: बहरोड़ में आज अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत समर कैंप का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि समर कैंप से युवाओं की प्रतिभा को पहचानने का भी अवसर मिलता है।
3: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
1: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत कल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा। बाड़मेर में पुलिस की ओर से साइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं पाली में साइकिल रैली के जरिए लोगों

0: को नियमित व्यायाम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेजड़ी वाटिकाएं विकसित की गई हैं। राज्य वृक्ष और थार कल्प वृक्ष मानी जाने वाली खेजड़ी के संरक्षण के प्रयास के तहत ये पहल की गई है। वन विभाग ने एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी का चयन कर करीब 1.5 करोड़ खेजड़ी पौध तैयार की है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जल्द ही इनका वितरण भी शुरू किया जाएगा।
1: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे कई शहरों का दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को बदले मौसम से काफी राहत मिली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बरसात के आसार हैं। राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां आज और कल कई हिस्सों में जारी रह सकती हैं। वहीं 8 जून से एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने और हीट वेव चलने की चेतावनी बताई गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में भारतीय टीम की चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। जापान में होने वाले एशियाई खेलों और भारत के श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम का चयन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल ने तैयार किया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र में स्थित जिला नागौर 7 जिलों से घिरा हुआ है। महाभारत काल में इसे जंगलादेश के नाम से जाना जाता था। नागौर खींवसर और कुचामन के किले के साथ ही मकराना के मार्बल के लिए ये जिला अपनी अलग पहचान रखता है। रामदेव पशु मेले और वीर तेजाजी मेले में भाग लेने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। नागौर जिले की चिट्ठी में आज कई मंत्रियों के दौरे और सामाजिक तथा विकास से जुड़े समाचार शामिल हैं। सबसे पहले बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की। केंद्रीय मंत्री बीते दिनों नागौर आए और उन्होंने मेड़ता सिटी में आयोजित राव दूधा प्रतिमा का अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने राव दूधा की वीरता, न्याय प्रियता और नारी सम्मान के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। रक्षा मंत्री ने मेड़ता के मीरा महोत्सव के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ रूपए की राशि देने की घोषणा भी की। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां रखी गई। इस अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। जगह जगह पौधरोपण किया गया। साथ ही

0: एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। इससे एक दिन पहले वन विभाग की ओर से नागौर में लवकुश वाटिका से रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस जवानों, विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। इस अभियान की शुरुआत नागौर के जड़ा तालाब के पूजन के साथ हुई। इस दौरान पौधे लगाए गए और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान 12 दिन तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा गया। इस दौरान जगह जगह साफ सफाई की गई और जल संरचनाओं के मरम्मत के कार्य हुए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अभियान के तहत नागौर के प्रताप सागर तालाब की पाल पर जल पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। श्री चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता, बिजली, पानी और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण का काम कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 15 मई तक स्व गणना का काम किया गया। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को कार्मिकों के साथ स्व गणना सुनिश्चित करने और हर कर्मचारी को कम से कम 10 अन्य परिवारों को प्रेरित करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया गया ग्राम रथ अभियान ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का प्रभावी माध्यम बना। अभियान के दौरान अधिकारियों ने योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। जिले में 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके लगवाए गए। इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत जिला अस्पताल सहित विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव और टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। नागौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रबारा माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS अस्पताल रो औचक दौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो सांचो करण वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली रे हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारी आर्थिक सलाहकार परिषद सागे मीटिंग कीनी। वह दुनिया में चाल रही उथल पुथल बीच भारत री माली बरकत ने बधावो देवन सारू करिया जावन वाला न्यारा न्यारा जतन रे बारा माय चर्चा कीनी। मीटिंग में जनता री जिंदगी ने और बेहतर बनावन और कारोबार करण माय आसानी लावन सारू विचार करीचियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल री धनवंतरी OPD यूनिट रो दौरो कीनो। वे मरीजों अस्पताल री व्यवस्थावां रे बारा माय जानकारी लीनी। श्री शर्मा मरीजों सारू भांत भांत री जांचां रा सुबिता, जरूरी दवाइयां री उपलब्धता और गर्मी माय छाया पान

0: ನೀರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತೆ ಕರಣರ ಹುಕಂ ದೀನ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಡ್ಡಿ ರೋಗ ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಾಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಅರ್ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿ ವಾರ್ಡ್ ರೀ ವ್ಯವಸ್ಥಾವಾಂ ರಬಾರ ಮಾಯಿ ಮರೀಜಾಂ ಜಾಣಕಾರಿ ಲೀನಿ. ಈ ಮೌಕೆ ವ ಕಹ್ಯೋ ಕ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಮಾಯಿ ಚೋಖೋ ಕಾಮ್ ಫ್ಯೋ ಹೈ ಪನ್ ಫೇರಿ ಸುಧಾರ್ ರೀ ಗುಂಜಾಯಿಶ್ ಹೈ.
1: या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं. आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ. मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है. कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो. हमारी सरकार पूरी तरह से आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है. उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है. जो भी
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि लारला 12 साल माए देश माए सूरज री रोशनी बिजली बनावन रो बूतो 2.8 गीगावाट बधर 155 गीगावाट फेंक्यो है. वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि देश माए 40 लाख हों बत्ता घरा माए सूरज री रोशनी बनी बिजली काम ली जा रही है. शेखावत कहो कि खेतीबाड़ी माए सूरज री रोशनी बनी बिजली दूनी तादाद माए काम ले उनो आबो हवा ने बचावन सागे बरकत री मिसाल है. केंद्रीय मंत्री कहो कि देश रा किसान अब जिनसा री उपज लेवन सागे बिजली पैदा कर रहा है. श्री शेखावत आज जोधपुर पधारिया वठे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वह कहो कि लारला 12 साल माए सुशासन देश री तस्वीर बदली है.
2: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है.
0: भारतीय जनता पार्टी रा नुआ बनाई जा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज पहला दौरा सारू जयपुर पधारिया. वह भाजपा रा प्रदेश दफ्तर माए पार्टी रा ओहदादारा सागे मीटिंग कीनी. वारो काल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्तावां सागे खास मीटिंग करन रो कार्यक्रम है. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश रा न्यारा न्यारा महकमा माए भर्तियां रा काम रो आज जायजो लीनो. वह गृह प्रशासनिक सुधार, पंचायती राज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा और नर्सिंग री भर्तियां रो विभागवार जायजो लीनो. मुख्य सचिव महकमा ने भर्ती रा काम जुड़ी जरूरी कार्रवाई बेगी पूरी करन रा हुकम दीना. श्री श्रीनिवास भर्ती रा काम माथे लगातार निगरानी राखण बाबत कहो. मुख्य सचिव स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 रातेत जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा माए स्वच्छता सर्वेक्षण री तैयारियां और नवाचारां रा बारा माए जानकारी लीनी. मीटिंग माए 8 होड़ा साफ सफाई रो प्रबंधन, कचरो भिड़ोकरण, गंदी चीजा रा प्रसंस्करण और जन जागरूकता सारू कराया जा रहा कामा री जानकारी दी री जी. मुख्य सचिव साफ सफाई रा काम माए ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम रा नवाचार री सराहना करता थका साफ सफाई माए तकनीक रो बत्तों बत्तो इस्तेमाल करण बाबत कहो. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंक सत्यापन और परीक्षा री कॉपी उजू जंचावण सारू अर्जी देवण री आखिरी तारीख आज 6 जून नू बधार 7 जून करती नी है. ई पाछे विद्यार्थी अब काल आधी रात ताई अर्जी दाखिल कर सके है. समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो. केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नौजवानों ने विकसित भारत रो सपनो सांचो करण री प्रेरणा देवन वाली ताकत बताया है. वह नई दिल्ली माए राखी जिया मेरा भारत युवा सम्मेलन माए बोल रहा है. डॉक्टर मांडविया कहो कि भारत दुनिया रा सब नौजवान देशों माए शामिल है, जठे करीब 65% आबादी 35 साल कम उम्र रा लोगां री है. वह कहो कि सरकार विकसित भारत बनावण और नौजवानों री ताकत और बूता ने सही दिशा देवण सारू लगातार कोशिश कर रही है.
3: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है. ए देश की युवा...

0: की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: अलवर सांसद खेल उत्सव रा तहत बहरोड़ माए आज समर कैंप शुरू भयो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और अलवर रा सांसद भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सागे इनरी शुरुआत कीनी। ई मौके दिया कुमारी कहो के खेलाओं अनुशासन, टीम भावना और अगुवाई करण रा बूता रो विकास वह है। उप मुख्यमंत्री कहो के समर कैंप मोटियारा री प्रतिभा री पहचान रो मौको ही मिले है।
2: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
1: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान रहते काली स्वास्थ्य रो ध्यान रखने रे बारे में जाग जगावन।

0: मौके दिया कुमारी कहो के खेलाओं अनुशासन टीम भावना और अगुवाई करण रा बूतारो विकास फै है। उप मुख्यमंत्री कहो के समर कैंपू मोटियारा री प्रतिभा री पहचान रो मौको ही मिले है।
1: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान रातेत काली स्वास्थ्य रो ध्यान रखन रे बारे माय जाग जगावन सारू खास कार्यक्रम रख्या जावेला। बाड़मेर माय पुलिस री ओर साइकिल रैली निकाली जावेला। पाली माय साइकिल रैली रे जरिए रोजिना कसरत करण जुड़ी जाग जगाई जावेला। राज्य वृक्ष अर थार कल्प वृक्ष कहो जावन वालों खेजड़ी रा रूखड़ा ने बचावन री कोशिशां रा तहत चूरू जिला री न्यारी न्यारी ग्राम पंचायतां माय खेजड़ी वाटिका विकसित करी ची है। वन विभाग एक जिला एक वनस्पति रातेत खेजड़ी रा करीब 1.5 करोड़ पौधा तैयार कीना है। माना खबर नवीस बतायो के ए पौधा बांटन रो काम बेगोई शुरू करियो जावेला।
2: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: अरब मौसम, राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल बीच घनखर ठोड़ा पारो 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। कई शहर में दिन रा बगत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो है। हालांकि राज्य रा आतुणी हल्का माए कठे कठे जोरदार तावड़ो पड़ रियो है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर माए पारो 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। मौसम विभाग रे मुजब आज प्रदेश रा 25 जिला माए आंधी बारिश रा आसार है। आंधी बारिश आज और कल कई हल्का माए चालती रहवन री संभावना है। महकमो 8 जून उजू गर्मी रो असर बधवा सागे लू बाजन सारू चेतायो है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इंग्लैंड और आयरलैंड सागे T20 मुकाबला सारू भारत री टीम रो ऐलान कर दिनो है। श्रेयस अय्यर ने टीम रा कप्तान और तिलक वर्मा ने उप कप्तान बनाई चिया है। 15 साल रा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने पहली दफा भारत री टीम में शामिल करी चियो है। वैभव इस साल री IPL होड़ में सबों 72 रन बनाया है। नौजवान खिलाड़ी प्रिंस यादव नई टीम में शामिल करी चिया है। जापान में फेवन वाला एशियाई खेलना और भारत रा श्रीलंका दौरा सारोई टीम चुनी ची। भारत और अफगानिस्तान री क्रिकेट टीम बीच इन सीरीज रा आज शुरू हुआ। एकला टेस्ट मैच माए भारत पहली पारी माए 368 रन बना लेना है और मारा 3 बल्लेबाज आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनार खेल रहा है। ऋषभ पंत 50 रन बनार मारो साथ दे रहा है। इनु पहले KL राहुल 100, साई सुदर्शन 81 और यशस्वी जायसवाल 24 रन बनार आउट हुआ। राजस्थान माए श्री गंगानगर रा मानव सुथार ई पहली दफा भारत री टीम माए शामिल करण सा गए ई मैच माए खेल रहा है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागे जीवन स्तर माए सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रे बारा माए चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS अस्पताल रो औचक दौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो सांचो करण वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है।

0: पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश उपेला सुनियो भाई लोगों भजन और बात करा आप खेतीबाड़ी की तो आपने किसान भाइयों वास्ते एक भेंट वार्ता लेके आया हाँ उर्वरकों का संतुलित उपयोग। वार्ताकार है डॉक्टर अनूप कुमार और अंग सागे बात करण लाग रहा है भारत भूषण। लियो सुनो सा।
3: श्रोताओं नमस्कार, आज अपने साथ आकाशवाणी सूरतगढ़ के केंद्र पर डॉक्टर अनूप कुमार जी हैं जो वर्तमान में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया में और कृषि के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए शोध और किसानों को दी गई नई नई जानकारियां अक्सर हम लाभान्वित होते रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब।
4: नमस्ते। नमस्ते साहब, सबको राम राम।
3: डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज कृषि के अंदर डलने वाले उर्वरक है, खादें हैं, दिनों दिन महंगाई के चरम को छू रही है, कृषि जो है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, तो किसान के उत्थान के लिए और ये जो रासायनिक उर्वरक हैं इनके अत्यधिक प्रयोग की वजह से क्या नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक समय के अंदर हम हरित क्रांति लाए थे और इन रासायनिक उर्वरकों को साथ लाए थे, आज उसी तर्ज पर हमें ज़रूरत पड़ी है स्वास्थ्य क्रांति की, तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि उर्वरकों के असंतुलित उपयोग की वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं और किस तरीके से संतुलित उपयोग हम इनका कर सकते हैं।
4: जी, मैं बताना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि जरूरी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उर्वरकों का असंतुलित उपयोग मृदा की उर्वरता में गिरावट, पर्यावरण प्रदूषण और उत्पादन में कमी का कारण बन रहा है। इसलिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। अब संतुलित उर्वरक उपयोग क्या है और मृदा में इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो उर्वरक वो जैविक या रासायनिक पदार्थ हैं जो फसलों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
3: ठीक है।
4: रासायनिक उर्वरकों में जैसे यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपरफास्फेट है, ये है, और जैविक उर्वरकों में जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, या बायो उर्वरक भी इसमें हो सकते हैं। इन उर्वरकों का काम भूमि में पोषक तत्व देना होता है ताकि फसल की पूरी तरह से वृद्धि और विकास हो, जिससे अच्छी उपज प्राप्त हो सके। सभी फसलों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसी तरह से इन पोषक तत्वों को प्रमुख पोषक तत्व कहा जाता है। कुछ पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन इत्यादि कम आवश्यकता होती है फसलों को, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इसके अलावा जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हवा और पानी से मिल जाते हैं। अगर ये पोषक तत्व सही समय पर, सही मात्रा में व सही अनुपात में पौधों को मिलते हैं, तब हम कहेंगे कि फसल को संतुलित पोषक तत्व मिल रहे हैं।
3: कुल मिला के चाहे रासायनिक उर्वरक हो या जैविक उर्वरक हो,
4: जी,
3: पोषक तत्व दोनों ही उपलब्ध कराते हैं। रासायनिक उर्वरकों से जो हमें नुकसान हो रहा है डॉक्टर साहब, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें।
4: देखो, सभी फसलें जैसे मैं बताऊं, धान है, मक्का है, गन्ना है, सब्जी, कपास, गेहूं, अपने एरिए में जो फसलें हो रही हैं, चना, सरसों, इनमें संतुलित उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता जो है वो अलग अलग होती है।
3: अच्छा।
4: क्योंकि सब में ऐसा नहीं है, भी सब में एक जैसी होती है, वो क्षेत्र विशेष और वहाँ की मृदा की जांच करने के बाद उसकी मात्रा जो है वो डिसाइड होती है, जो कि रिसर्च के माध्यम से निकाली जाती है कि किस फसल को कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास चाहिए।
3: कुल मिला के मृदा परीक्षण सबसे आवश्यक है।
4: सबसे आवश्यक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल
3: ठीक है।
4: तो सामान्यतः जैसे अनाज वाली फसलों के लिए अपने एक, जैसे मैंने बताया भी, रिसर्च से डिसाइड होती है ये, तो प्रति एकड़ 48 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटेशियम एक एकड़ में जरूरत होती है, लेकिन यह मात्रा मिट्टी के प्रकार,

0: के अनुसार अलग अलग हो सकती है
1: ठीक है
0: जी। और अब रही बात इनके, जैसे आपने मिट्टी का कहा, तो मिट्टी की जांच करना तो बहुत ज़रूरी है। देखो, संतुलित उर्वरक उपयोग के कुछ सिद्धांत होते हैं,
1: जी
0: जिसमें पहला सिद्धांत ही है मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग,
1: ठीक
0: मतलब मिट्टी
1: है,
0: की जांच कराओ
1: कराने के
0: और
1: बाद में ही हम निर्धारित कर सकेंगे कि किस फसल को कितनी उर्वरक की
0: आवश्यकता
1: आवश्यकता
0: है।
1: है।
0: तो इसमें जैसे संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मृदा की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग मृदाओं में पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा होती है। मृदा जांच के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि किस फसल के लिए कितनी मात्रा में पोषक तत्व मृदा में उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में उक्त फसल के लिए ऊपर से पोषक तत्वों की आवश्यकता रहेगी।
1: ठीक है
0: अगर मृदा जांच में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो उस फसल के लिए ऊपर से कम पोषक तत्व डालने की आवश्यकता होगी।
1: ठीक है
0: मृदा जांच के बाद जो रिपोर्ट मिलती है, उसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहा जाता है। और ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा के स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ फसल की लागत कम करने और पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है
1: भाई लागत तो कम होगी भाई, आपन ठा पड़ गयो
0: जी।
1: भाई कितनी उसमें मात्रा है
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: कितनी की आपने को आवश्यकता है। कई बार क्या है कि मृदा परीक्षण के बिना किसान भाई जब उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो जो पहले से ही मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक तत्व है वही ऊपर से देने लग
0: ऊपर
1: जाते
0: से
1: हैं,
0: दे,
1: तो कहीं ना
0: हाँ
1: कहीं लागत पर बहुत बड़ा फर्क पड़
0: फर्क
1: जाता है।
0: पड़ता है। इसके अलावा जो मैंने सिद्धांत बताए, उसमें जो दूसरा सिद्धांत है वो है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन।
1: ठीक है
0: मतलब एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और कार्बनिक स्रोतों का समन्वित उपयोग किया जाता है, मतलब
1: ठीक है,
0: मिला जुला
1: तीनों
0: करके।
1: को मिला के।
0: हाँ, इसमें मृदा की उर्वरता बनी रहती है और पोषक तत्वों की आपूर्ति संतुलित होती है और फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है
1: हर तरफ से भूमि को ताकत मिल जाती
0: जी।
1: है।
0: इसके अलावा इन्हीं सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत जो है वह सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग। मृदा परीक्षण के आधार पर जिंक, लोहा, बोरोन आदि सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं, उनके उचित मात्रा में उपयोग करने से पौधों का संतुलित विकास होता है और इससे फसल की गुणवत्ता, उत्पादन में सुधार होता है तथा मृदा स्वास्थ्य एवं पोषक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है।
1: ठीक है सर।
0: इन्हीं सिद्धांतों में फिर एक सिद्धांत और है, फसल विशिष्ट उर्वरक सिफारिश।
1: ठीक है।
0: फसल विशिष्ट उर्वरक सिफारिशों में मृदा परीक्षण, फसल की किस्म, फसल वृद्धि अवस्था
1: ठीक
0: तथा
1: है।
0: स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उर्वरकों की मात्रा एवं प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। इसमें पोषक तत्वों का सही संतुलन बना रहता है, उर्वरकों का अपव्यय कम होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। यह पद्धति मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ टिकाऊ कृषि और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है। इसके अलावा जो पांचवा सिद्धांत है इसका, वो है
1: जी
0: सही समय, सही मात्रा और सही विधि का उपयोग करके उर्वरकों का उपयोग करना।
1: ये सबसे जरूरी है।
0: हाँ, यानी संतुलित उर्वरक उपयोग के सिद्धांतों में सही समय, सही मात्रा, सही विधि का बहुत महत्व है। उर्वरकों का सही समय पर उपयोग पौधों की वृद्धि अवस्था के अनुसार पोषण सुनिश्चित करता है तथा उसकी उपयोग क्षमता बढ़ाता है। सही मात्रा में उचित विधि से उर्वरक देने से पोषक तत्वों का अपव्यय कम होता है तथा लागत में कमी आती है।
1: ठीक है।
0: तो इसके साथ साथ जैसे अगर हम असंतुलित उर्वरक उपयोग करते हैं, यानी कि हमारा कोई बैलेंस नहीं है, मृदा जो ये सिद्धांत बताए इनका ध्यान में
1: बिल्कुल।
0: नहीं रखेंगे, तो उसके नुकसान क्या है? एक तो मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता में वृद्धि होती है।
1: ठीक है।
0: इसके साथ साथ पोषक तत्वों की कमी या उसमें जहरीलापन बढ़ जाता है,
1: ठीक है।
0: विषाक्तता बढ़ जाती है, जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, मृदा सूक्ष्म जीवों की गतिविधि कम होने लग जाती है और अंततः उत्पादन में गिरावट आने लग जाती है।
1: कुल मिला के अगर अपने उन मूल सिद्धांतों का उपयोग नहीं करते हैं तो ये हानियां हमारे किसान भाइयों को देखनी
0: जी
1: पड़ेगी।
0: जी जी जी
1: अच्छा एक डॉक्टर साहब, ये जो जैविक पदार्थ है
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: इनकी खेती के अंदर क्या भूमिका रहती
0: देखो,
1: है?
0: जैविक पदार्थ मृदा की उर्वरता बनाए रखने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। ये मृदा की संरचना, जल धारण क्षमता तथा सूक्ष्म जीवी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसल अवशेषों का उपयोग बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसके साथ साथ कुछ हमारे दूसरे उर्वरक जैसे हैं, आजकल जो नई जनरेशन के उर्वरक आए हैं
1: एक हमारे सुनने में आता है भी नैनो उर्वरक,
0: जी
1: ये
0: जी
1: क्या चीज है डॉक्टर साहब?
0: ये भी, मतलब मैंने बताया ना भी, नई जनरेशन के उर्वरक है ये।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, तो
1: ठीक है।
0: नैनो उर्वरक जो है वो संतुलित

0: उर्वरक उपयोग की दिशा में एक आधुनिक और प्रभावी तकनीक मान सकते हैं इसको, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उपलब्ध
1: उपलब्ध
0: करवाती है। यह उर्वरक पोषक तत्वों की अपव्यय को भी कम करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ उसकी उपयोग दक्षता बढ़ाता है और जिससे कम मात्रा में अधिक लाभ मिलता है। कम मात्रा मतलब नैनो उर्वरक की कम मात्रा। नैनो उर्वरकों के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है और रासायनिक उर्वरकों का निर्भरता भी कम हो जाती है।
1: कई बार डॉक्टर साहब देखा है कि बहुत से उर्वरक भूमि के अंदर होते हैं
0: जी
1: जो धीमी गति से घुलने वाले उर्वरक हैं,
0: हाँ है
1: उनके बारे में थोड़ा
0: जी।
1: प्रकाश डालें।
0: देखो, नियंत्रित या धीमी गति से घुलने वाले जो उर्वरक हैं वो संतुलित उर्वरक उपयोग की एक प्रभावी तकनीक कह सकते हैं, जो पोषक तत्वों को धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध कराती है। इससे पौधों का उनकी आवश्यकता के अनुसार लंबे टाइम तक पोषण मिलता रहता है और बार बार उर्वरक देने की आवश्यकता जो है वो कम पड़ती है।
1: अच्छा, ये बात तो हुई जो धीमी गति से घुलने वाले
0: जी
1: उर्वरक हैं।
0: जी
1: इसके अलावा किसान भाई जो फर्टिगेशन है, इसको थोड़ा समझाएं आप, ताकि किसान भाई इसको अपने दिनचर्या में, अपनी किसानी में लाएं तो कहीं ना कहीं लाभान्वित हो।
0: जी ये मॉडर्न एग्रीकल्चर के ही सारे हैं। फर्टिगेशन है, जैसे सटीक सिंचाई जिसको कह सकते हैं, तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। फर्टिगेशन संतुलित उर्वरक देने की एक उन्नत तकनीक है,
1: ठीक है।
0: जिसमें सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इस विधि से पौधों को सही मात्रा में, सही समय पर पोषक तत्व सीधे जड़ों तक पहुँचाए जाते हैं।
1: ठीक है।
0: इससे उर्वरकों की उपयोग दक्षता बढ़ती है और पोषक तत्वों का हानि जो है वो कम हो जाती है।
1: ठीक है।
0: इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, अभी सटीक सिंचाई जो है वो भी संतुलित उर्वरक उपयोग की एक आधुनिक पद्धति है, जिसमें खेत की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का सटीक प्रबंधन किया जाता है। इस तकनीक में मृदा परीक्षण, सेंसर और GPS आधारित
1: अच्छा
0: उपकरणों के
1: अच्छा
0: माध्यम से सही मात्रा में, सही स्थान और सही उर्वरक दिए जाते हैं, जिससे पोषक तत्वों की हानि जो है वो कम हो जाती है।
1: जिस हिसाब से आजकल ड्रोन से
0: हाँ,
1: जो हो रही
0: ये
1: है,
0: बिल्कुल, ये सटीक
1: बिल्कुल,
0: कृषि है।
1: हाँ, आधुनिक जो है वो
0: हाँ,
1: अपने
0: इसको प्रिसीजन
1: उपकरण आ
0: फार्मिंग
1: गए,
0: भी। हाँ जी, हाँ जी जी
1: और जल धारण की बहुत बढ़िया बताई आपने। सरकारें भी अपनी बहुत मदद कर रही है,
0: जी जी
1: डिग्गी है, सिंचाई पद्धति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, ताकि कम पानी के अंदर भी सिंचित क्षेत्र जो है किसान भाई बढ़ा सकते हैं।
0: जी जी
1: इसके
0: जी
1: अलावा डॉक्टर साहब, बहुत सी अब जो ज़रूरत है
0: जी
1: वो है स्वास्थ्य क्रांति की, तो जैव उर्वरक है, इनके
0: हाँ
1: बारे में थोड़ा आप
0: हाँ
1: बताएं।
0: देखो, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं इनको। जैव उर्वरक संतुलित उर्वरक उपयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक मान सकते हैं अपने, जो प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं
1: ठीक
0: और
1: है।
0: ये लाभकारी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसको कहें, फास्फोरस घुलनशीलता और अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराते हैं।
1: ठीक
0: ये
1: है।
0: क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर? इनमें जीवाणु होते हैं अलग अलग, और वो जीवाणु मृदा के अंदर जो रिसेसिव फॉर्म के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं उनको,
1: ठोस होकर
0: हाँ, उनको एक्टिव फॉर्म में ला करके
1: और
0: और फसलों को उपलब्ध करवाते हैं।
1: उपलब्ध बुनते
0: और
1: ने उपलब्ध करा दें।
0: हाँ, और कुछ जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी किसान भाइयों को अपने खेतों के अंदर इनका उपयोग करना चाहिए। और मैं तुम्हें ये कहूँगा कि भाई, किसान भाई जो है, जैसे उर्वरकों का संतुलित उपयोग भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है अभी, जिसमें किसानों को मोटिवेट करना, क्योंकि ये जो उर्वरक हम यूरिया DAP वगैरह यूज करते हैं, इससे हमारा जेब का खर्चा बढ़ता है,
1: बिल्कुल।
0: उत्पादन घटता है और जेब का खर्चा बढ़ता है। क्योंकि जब हम बैलेंस मात्रा में यूज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अपना खर्चा बढ़ेगा
1: बिल्कुल।
0: और जरूरत से ज्यादा जमीन के अंदर डाला हुआ उर्वरक जो है वो फायदेमंद नहीं है, वो नुकसानदायक ही है।
1: कुल मिला के डॉक्टर साहब, जो आपने आज जानकारी दी, खेती के जो सिद्धांत बताए आपने,
0: जी
1: ये सिद्धांत हर किसान को अपने जीवन में उतारने चाहिए जो किसानी कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद साहब।
2: सुनिए भाई लोगों, भेंट वार्ता उर्वरकों का संतुलित उपयोग। वार्ताकार है डॉक्टर अनूप कुमार और आंग सागे बात करने ला रहा भारत भूषण। तो आ वार्ता थाने किसी के लागी थे माने मेल, कागज और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम अवगत जरूर करवाया, पढ़ा बापा सुन लिया वो गीत लियो सुनो सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश उपेला सुनियो भाई लोगों गीत। किसान भाइयों आपने पशुधन के स्वास्थ्य को भी आपने ध्यान रखना जरूरी है। इन वास्ते पशुओं ने अच्छो संतुलित आहार संतुलित चारो देनो भी जरूरी है। और ये मौका आपने किसान भाई ज्वार जैसी हरे चारे की बीजांत कर सके। बिया तो आपने किसान भाई लगभग ज्वार की बिजाई कर ली है, फिर भी कोई भाई ज्वार बीजनो चाहे तो बहुत सी ऐसी अच्छी किस्म है जकी आप बीजांत कर सका, क्योंकि अच्छे दूध उत्पादन खातर अच्छी किस्म को चारों भी आपने होना जरूरी है। बात करें ज्वार खातर खेत तैयारी की, तो किसान भाइयों ज्वार की खेती खातर बिया तो कोई विशेष प्रकार की माटी या भूमि की जरूरत कौन पड़े। फिर भी जठे बढ़िया जल निकास वाली भूमि है, दोमट रेतली भूमि है, बठे आपा ज्वार की खेती कर सका। किसान भाइयों ज्वार बिजाई से पहले आपा अपनी जमीन ने एक जुताई माटी पलटन वाले हल से और दो या तीन जुताई देसी हल से करके माटी भुरभुरी बना लेनी है। अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से माटी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। किसान भाइयों अब बात करें ज्वार की बढ़िया बढ़िया किस्मों की। चारा वास्ते बिया तो ज्वार की बहुत सी किस्म है, लेकिन कुछ एक किस्म बढ़िया है जबकि संकरण विधि से तैयार करेड़ी है। किसान भाइयों ये संकर किस्म आपने 3 से 5 कटाई तक चारों दे सके जबकि बढ़िया किस्म है और आगे बीजांत आप कर सका। जिया संधिया 1049, दूधिया, राजचरी, हरा सोना, SMP चरी आ किस्म ने लेके आप बीजांत कर देव ताकि पशुओं ने भी टाइम पर बढ़िया चारो मिल सके। किसान भाइयों बिया तो गर्मी का मौसम है, तापमान ज़्यादा हो इन वास्ते ज्वार की बिजाई कतारा में करनी बेहतर है। इन सागे सागे किसान भाइयों ज्वार बिजाई करता टाइम गहराई को भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार आप बीज ज़्यादा गहराई में या कम गहराई में बीजांत कर देवा जिस अपनी ज्वार की फसल खराब हो सके। इन खातर बीज उचित गहराई पर ही बीजनो बढ़िया रेवे। कई बार भाई लोग ज्वार ने छिड़कवा विधि शू भी बीजे जके की वजह शू कई बार बीज ऊपर ही रह जावे और अंकुरण भी फिर बढ़िया कोनी होवे। किसान भाइयों बिजाई से पहली जमीन की नमी जरूर जांच पर कर लेनी चाहिए। कई बार नमी की कमी के कारण बीज अंकुरण भी कम होवे, तो इन वास्ते उचित नमी जमीन में होनी जरूरी है। किसान भाइयों बीज के बढ़िया अंकुरण खातर आपा ज्वार की बुआई पैरा विधि से भी करनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की जठे तक बात है 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर रखनो है, यानी प्रति बीघा आप 5 से 6.5 किलो बीज लेवा तो बढ़िया रेवे। अब बात करा खाद और उर्वरक की, तो किसान भाइयों ज्वार की खेती के लिए बिजाई से पहली 20 से 25 टन गोबर या सड़ी गली खाद प्रति हेक्टेयर आप जमीन में नाखनी चाहिए। किसान भाइयों गोबर की खाद नाखने के बाद रासायनिक उर्वरक में 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देनो चाहिए। भाई लोगों भारी माटी में सगड़ा उर्वरक बुआई के टाइम और रेतली और दोमट माटी में नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के टाइम देनी है और बाकी की आधी मात्रा बुआई के 30 से 35 दिन बाद आपने जरूर देनी है। तो इन तरह आप खाद उर्वरक की मात्रा सही टाइम पर और सही मात्रा में उचित तरीका से देनी जरूरी है ताकि ज्वार जैसी फसल में पोषक तत्वों की कमी न रहे। इनका सागे सागे किसान भाइयों खड़ी ज्वार की फसल में आप छिड़कवा विधि से उर्वरक देवा तो छिड़काव से उर्वरक सगड़ा पौधा तक पूगना जरूरी है। इन बात को आप खास ध्यान रखा तो बातें और भी करांगा। पहला आप सुन लिया ओ भजन सुनो सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई लोगों बात करा ज्वार की खेती के बारे में, तो किसान भाइयों गर्मी का मौसम में जे आप बिजाई करी है तो ई टाइम 4-6 दिनांक अंतराल छू सिंचाई देर देनी चाहिए। बरसात होने की स्थिति में माटी की जरूरत

हिसाब से सिंचाई पानी लगाना जरूरी है सा, लेकिन ध्यान और रखना है कि सिंचाई का लंबा अंतराल छू चारे की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इन वास्ते माटी की किस्म और फसल की जरूरत के हिसाब से नियमित रूप से सिंचाई देनी जरूरी है, क्योंकि बिना पानी अपनी ज्वार की फसल खराब हो सके। इनके अलावा किसान भाइयों, पानी के स्वाद को भी ध्यान रखना जरूरी है। कई बार ज़्यादा खारो पानी फसल भी खराब कर देवे, तो इन वास्ते खारो मीठो पानी रलागे फिर ही आपा ज्वार ने पानी देना है। इनका सागे सागे किसान भाइयों, जिया ही आपा पहलो या दूसरो पानी लगावा तो बदतर आना है सागे सागे कई तरह का खरपतवार भी उगना शुरू हो जाए, जका अपनी फसल के लिए तो नुकसानदायक हो ही है। इनके अलावा जको खाद पानी आपा देवा बिंगो ज़्यादातर दोहन खरपतवार सोख लेवे। इन वास्ते जठे तक हो सके फसल में खरपतवार उगण ही नहीं देना चाहिए। जे पैदा हो ही जाए तो बाना निकालना जरूरी है। इनके लिए किसान भाइयों, बुवाई गए 2 दिनांक माए सीमाजिन या एडाड्राफ 80 WP को 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर्शु छिड़काव करना चाहिए। इनके अलावा निराई गुड़ाई करके भी आप खरपतवार ने नष्ट कर सका। किसान भाइयों, ज़्यादा खरपतवार जे पैदा हो जाए तो रासायनिक द्रव्य को इस्तेमाल करके आप अपनी ज्वार की फसल ने खरपतवार रहित बना सका, तो आ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन किसान भाइयों, ई बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप रासायनिक दवा को छिड़काव करा तो हाथों हाथ चारा ने नहीं काटना चाहिए और पशुओं ने कतई नहीं खुआना चाहिए। छिड़काव के 10 से 12 दिन बाद ही चारों पशुओं ने खिलाना है, ताकि रसायन को जो असर है वो खत्म हो जाए। तो आज बातों को ध्यान रखिए, आप ज्वार की खेती कर सका और अच्छी पैदावार ले सका। पढ़ना बापा सुन लिया वो गीत सुनो सर।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, लीजिए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं फिल्मी भक्ति गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं आशिकी फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे।

श्रोताओ, आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में आज फिल्म है आशिकी।

कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी के कुछ फिल्मी नगमे।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म के कुछ फिल्मी नगमे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, लीजिए अब सुने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रज्ञानानंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता। सविता श्री भास्कर ने भी महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया। केएल राहुल और कप्तान गिल के शतक से पहले टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान। श्रेयस अय्यर होंगे टीम के नए कप्तान। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला माया च्वालिन्स्का और मीरा एंड्रीवा के बीच जारी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली होंगे आमने सामने। भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने जापान को हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता और सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच जारी।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माइंड गेम शतरंज से, जहां प्रज्ञा नंदा और सविता श्री भास्कर ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में प्रज्ञा नंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वे इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार है कि किसी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत पर प्रज्ञा नंदा को बधाई दी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: शह और मात के खेल में कल 10वें और आखिरी राउंड में प्रज्ञाना नंदा ने विंसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम किया। सफेद मोहरों से खेलते हुए प्रज्ञाना नंदा ने बीच के गेम में कीमर की कुछ गलतियों का फायदा उठाकर 45वीं चाल में जीत हासिल की और टूर्नामेंट को 5 जीत 2 हार और 2 ड्रॉ से 18 पॉइंट्स के साथ खत्म किया। उनके दोनों ड्रॉ मैचों का फैसला आमागेडन गेम में हुआ, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की।

0: दुनिया के पूर्व नंबर 4 खिलाड़ी वेस्ली सो ने आखिरी राउंड में अली रेजा फिरोजा के खिलाफ ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट को 17 अंकों के साथ समाप्त किया। उनके खाते में 2 जीत और 8 ड्रॉ रहे, जिनमें से 6 आर्मागेडन मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की। 10वें राउंड में वेस्ली सो ने 1.5 अंक जुटाए, जबकि फिरोजा सिर्फ 1 ही अंक हासिल कर सके। अली रेजा फिरोजा 15.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन जो इस टूर्नामेंट में 2 बार आर प्रज्ञानंदा से हार गए, 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 3 मैच जीते, 4 हारे और 3 ड्रॉ खेले। कीमर 11 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर रहे, जबकि भारत के मौजूदा क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश 1 जीत 5 हार और 4 ड्रॉ से 8 पॉइंट्स के साथ छठे और आखिरी स्थान पर रहे। फाइनल में सबका ध्यान प्रज्ञानानंदा पर था, क्योंकि वो ओवरनाइट लीडर वेस्ली सो से आधा पॉइंट पीछे थे। वेस्ली सो के फिरोजा के साथ शुरुआती ड्रॉ पर सहमत होने के बाद वो आगे निकल गए। उन्होंने बीच के गेम में मिली बढ़त को कीमर पर एक शानदार जीत में बदल दिया। उन्होंने नौवे चेस में शानदार खेल दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। छठे राउंड के बाद प्रज्ञानानंदा अंक तालिका में छठे और आखिरी स्थान पर थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने लगातार 4 मुकाबले जीतकर शानदार वापसी की और इस दौरान उन्होंने मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराया और अंतिम से पहले वाले राउंड में अपने हमवतन डी गुकेश के खिलाफ भी जीत दर्ज की। इन जीतों के बूते वो खिताब की दौड़ में शामिल हुए। 2021 में कार्लसन के बाद ये पहली बार था कि किसी भी खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में लगातार 4 मैच जीतने का कारनामा किया हो। मैच के बाद प्रज्ञानानंदा ने फाइनल के अपने अनुभव को साझा किया।
1: Yeah, I'm very happy. I didn't expect it when I lost 2 games in a row, but I think I was also playing with lot of control in last 4 games and I mean things are also just going my way, so obviously very happy. Didn't do anything special, but I mean the one main thing is that just to keep some time in reserve and not get down to seconds, because yeah, it's basically like tossing a coin when you're down to seconds. So that's something I improved in my play. Like I was playing a little bit faster. I was having time advantage in almost all like the 4 games. And then, I mean, I think overall my quality was good throughout the tournament. I was getting good positions even in the first half, but I was just not converting them. So once I started to have some time, I think it started to go my way.
0: World number 1 Magnus Carlsen ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर अपने घरेलू टूर्नामेंट को जीत के साथ खत्म किया। मुनीश शर्मा को
2: उधर 19 वर्षीय सविता श्रीभास्कर ने मंगोलिया के उलान बतूर में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2027 फिडे महिला विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सविता ने अफरुजा खमदमोवा को फाइनल मुकाबले में हराया। और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। सुनते हैं मैच के पहले दिन कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।

0: महाराजा यादवेंद्र रिपीट महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच का पहला दिन भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने पहले दिन खेल की समाप्ति तक 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में 41 के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल 5 चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साई सुदर्शन ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन जोड़कर भारतीय टीम को 180 के स्कोर तक पहुंचाया। सुदर्शन ने 104 गेंद में 13 चौकों की मदद से 81 रन टीम के खाते में जोड़े। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने टीम की कमान संभाली। कप्तान ने केएल राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाकर स्कोर 247 तक पहुंचा दिया। केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली।
1: For the brace brings up century number 12 in test cricket.
0: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और दिन के खेल की समाप्ति से पहले उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। खेल खत्म होने तक गिल और पंत के बीच चौथे विकेट के लिए 148 गेंद में 121 रन की अटूट

0: साझेदारी हो चुकी है। गिल 143 गेंद में एक छक्के और 11 चौकों के साथ 103 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं।
1: This time he does it. He's been a class act as a skipper. He's been extremely consistent. The 11th century for Captain Shubman Gill.
0: पंत ने भी 70 गेंद में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 50 रन बना लिए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दिन का खेल खत्म होने तक मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: इस बीच बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं तिलक वर्मा उपकप्तान टीम के होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।
0: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और साथ ही आईपीएल में जबरदस्त और विस्फोटक प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दोनों सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। भारत की प्लेइंग 11 में जगह पक्की होने से अब वैभव के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर टीम की ओर से खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनने का शानदार मौका होगा। महिलाओं में शेफाली वर्मा के नाम ये रिकॉर्ड है। भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स में ये रिकॉर्ड अगर हम इस समय बात करें तो सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 206 दिन की उम्र में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। वैभव के साथ साथ हर्षित राणा और रवि बिश्नोई की भी टीम में वापसी हुई है। प्रिंस यादव को भी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टीम में जगह दी गई है, हालांकि उन्हें एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्य कुमार यादव को किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है। ये थोड़ी बात निराशाजनक जरूर है सूर्य कुमार यादव के लिए। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में रखा गया है। वहीं ईशान किशन और शिवम दुबे की बात करें तो उन्हें भी टीम में जगह दी गई है। नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल को भी टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तेज गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथों में सौंपी गई है, जबकि उनका साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव देते हुए नजर आएंगे। उधर एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम में जसप्रीत बुमराह को रखा गया है, हालांकि एशियन गेम्स के लिए मोहम्मद सिराज टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। जी प्रशांत
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। अहमदाबाद में खेली जा रही वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतकर मेडल टेबल में टॉप पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में आज भारत के रोहन तायडे ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल कॉम्पिटिशन में यह कामयाबी हासिल की। मेडल जीतने के बाद उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की।
4: नमस्ते, मेरा नाम रोहन सुनील तायडे, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने जो आर्टिस्टिक सिंगल किया उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो मेरे घर पे बहुत ट्रेनिंग की थी, पर जो कैंप में मैंने एक महीना ट्रेनिंग की उससे भी बहुत मेरे को कुछ सीखने को मिला।
3: भारत ने इस वर्ल्ड क्लास योग कॉम्पिटिशन में 6 गोल्ड समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। कल भारत की सब जूनियर लड़कों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने नेपाल को हरा कर गोल्ड मेडल जीता था, जबकि भारत की जूनियर लड़कियों की ट्रेडिशनल ग्रुप टीम ने नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने मेडल टेबल में अपनी टॉप पोजीशन बनाई रखी है। मयूर सोलंकी, स्पोर्ट्स कैन, आकाशवाणी अहमदाबाद।
2: और अब बात फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब मीरा एंड्रीवा ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में मीरा ने माया च्वालिन्स्का को 6-3, 6-2 से हराया। उधर पुरुष सिंगल्स में भी कल फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेविया कोबोली आमने सामने होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
5: प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों के पास अपना पहला फ्रेंच ओपन जीतने का सुनहरा अवसर है। ज्वेरेव और कोबोली के बीच फाइनल रोमांचक होने की उम्मीद है। ज्वेरेव एटीपी हेड टू हेड सीरीज में कोबोली से 3-1 से आगे हैं। वे पिछले साल रोलिंग एरो में तीसरे राउंड में खेले थे, जब ज्वेरेव ने 6-2, 7-6, 6-1 से जीत हासिल की थी। 29 साल के ज्वेरेव का बड़े टूर्नामेंटों में शानदार रिकॉर्ड है। वे 2020 US ओपन और पिछले साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर अप रहे और 2024 में फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने में सिर्फ एक सेट दूर रह गए। वहीं ज्वेरेव ने जैकब मेंसिक को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि कोबोली को मैटियो

0: रोनाल्डी की बीमारी की वजह से मैच से हटने से फाइनल का टिकट मिला। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में चेक स्टार जेकब मेंसिक को 4 सेट में हराकर फाइनल में जगह बनाई। 3 घंटे 1 मिनट चले मैच में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जेकब मेंसिक को पेरिस के कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 से हराया। ज्वेरेव दूसरी बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स के।
1: और अब बात फुटबॉल की। गोवा के मडगांव में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराया। भारत ने इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड 6th खिताब अपने नाम किया है। और अब बात हॉकी की। जापान के काकामिगहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए। कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। वहीं अंडर 18 लड़कियों की भारतीय टीम ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में कोरिया को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ शूटआउट में मिली करीबी हार से वापसी के इरादे से उतरी भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले 2 मिनट में ही बढ़त बना ली। संदीपा कुमारी ने दूसरे मिनट में गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी थी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम

0: काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गाँव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र

0: भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट

0: टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The Ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए अब आखिर में सुने जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने को है। लीजिए अब हमारा अगला कार्यक्रम सुने दिल्ली केंद्र से। कृपया इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थीं। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे

0: क्षेत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुँचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक ज़माना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में, जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम।

0: पंखवाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
1: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नवाई टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं, मुझे लिखने की और चीज़ों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
0: पंकज जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
1: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुल्टू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो, मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिखते हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी, उसने दी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आके मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने। तो मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गया और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला, तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ, लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
0: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
1: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीज़ों को जो देखने

0: का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप फिर नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीज़ों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये

0: संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
1: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर
2: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
1: सर रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञे जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
2: अज्ञे और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
1: जी,
2: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
1: शब्द चित्र
2: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
1: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
2: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
1: जी।
2: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
1: जी।
2: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया
1: जी।
2: है और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधि में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है
1: जी, जी।
2: तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
1: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
2: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही
1: जी।
2: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है।

0: और इतना ही नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं
1: जी
0: उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों
1: जी
0: या सुभद्रा कुमारी चौहान हों,
1: जी
0: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया
1: जी
0: और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया,
1: जी
0: तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
0: जी,
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई लेकिन वो सब चीज़ें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची।

जो हाशिए के इंसान की आवाज बने, काजी नजरुल इस्लाम जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया, मुद्रा राक्षस हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया, नाटक उपन्यास आलोचना हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी, नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुड़े।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाई हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुड़े। ही लेटर रिसीव्ड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग फॉर 8 ईयर्स फ्रॉम डॉ विकास कशालकर एंड पंडित यशवंत बुआ जोशी, लर्निंग द इंट्रिकसीज ऑफ द ग्वालियर घराना। देर आफ्टर ऋषिकेश रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस ITC संगीत रिसर्च अकादमी स्कॉलरशिप, कमिंग अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ द स्टॉलवर्ट पंडित उल्लास कशालकर। For 6 years, he underwent intense training in the pure gharana gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras gharana.
0: Rushikesh Gangurde, Akashwani ke A shreni ke gayak kalakar hai. Unki gayaki mein sangeet ka saundarya, bhavyata aur madhurya jhalakta hai, जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है, और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: Rushikesh Gangurde is an A-grid artist of Akashwani and is steadily carving a niche for himself as a gharanedar vocalist who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुड़े जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर।

0: अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुति बंदिशे प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Ashray Kulkarni and on the harmonium by Shri Makaranda Karvandikar. Rishikesh begins his vocal recital with Rag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: राग बिहागड़ा।
1: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
0: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, सभा के आखिर में लीजिए सुने समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी।

0: उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभाओं के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:50 पर कल के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।